89.6 Mirchi 1. It's hot.

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

देखो, जिसने भी कहा है टाइम इज मनी, शत प्रतिशत सही कहा है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और वक्त आजकल के जिंदगी में, दुनिया में इतनी अहम चीज़ हो गई है। मतलब सही है, जिसने भी कहा है टाइम इज मनी इज एब्सोल्युटली राइट। और मुझे बताइए, ऐसे कितने ही लोग हैं आपके जिंदगी में जो बेवक्त, जब आपको जरूरत हो, आपके लिए बिल्कुल हाजिर हो जाए। गिन सकते हो ना आप उंगली पर, आई एम श्योर ऐसे लोग ना जिंदगी में बहुत कम ही होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए उनके पूरे बिजी डे रूटीन से, शेड्यूल से, जिंदगी से आपके लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं, तो बॉस यू आर एब्सोल्युटली लकी माई फ्रेंड। तो बस ऐसे लोगों को ना हमेशा से अपने पास रखना, अपने करीब रखना, और उनके लिए भी ना हमेशा अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ वक्त हमेशा निकाल देना। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ इस खूबसूरत ख्याल के साथ शो की शुरुआत करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और मेरे पास तो आपके लिए वक्त ही वक्त है, स्पेशली अगले 4 घंटे, अरे बहुत बातें करेंगे और बहुत टाइम स्पेंड करेंगे राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na fiyat bala burga. Mirci, burga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी।
2: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन था, उसकी शादी के फोटो बता दिया यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लगाया नहीं।
2: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: नहीं नहीं
2: नहीं नहीं
1: मैं कल को
2: फोटो खींचे। अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
1: नहीं सर, क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी। हेलो, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कारपेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live in

0: Well, that was Arijit Singh ki awaaz mein ye gaana Pyar Hota Kahi Baar right here on Mirchi aapke saath jud gayi hai. और देखिए भाई, दो दिन से आपने रियलाइज किया होगा कि नहीं, अब कतर की गर्मी ना कुछ अलग ही लेवल पर जा रही है और जा भी रही है. इनफैक्ट कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट कुछ कहती है इस बारे में.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
2: वेदर अपडेट.
0: उनका ये कहना है कि अब यानी कल शाम से लेकर वीकेंड तक ह्यूमिडिटी जो है वो अपने एकदम हाईएस्ट लेवल पर रहने वाली है. यानी जब आप कार में बैठोगे तो थोड़े से आपके शीशे जो है वो फॉग भी कर सकते हैं. तो इस तरह से जब भी आप ड्राइव करते हो ध्यान रखिएगा, और ये जो ह्यूमिडिटी का जो खेल चल रहा है ना वो समझ लीजिए वो एकदम अपने फॉर्म में है. मीनवाइल आज का जो टेम्परेचर है एग्जैक्टली ये कहता है 43 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम है रहेगा, 34 पर मिनिमम रहेगा. हालांकि जो इसके फील्स जो होते हैं एक्चुअल जो होते हैं 48-49 के हिसाब से होते हैं. ह्यूमिडिटी जैसे मैंने कहा कि 70% पर है राइट नाउ. हवाएं 10 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है. ऑल इन ऑल यस, गर्मी का मौसम है एंड वी नो इट. अगस्त का महीना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें ज़्यादा नहीं एग्जैजरेट करना चाहिए, हमें हर चीज़ को थोड़ा सा रखना चाहिए ताकि मेंटली हम प्रिपेयर्ड रहे इस चीज़ के लिए राइट. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ज़बरदस्त से मैसेजेस आए हैं यहाँ पर. गुड मॉर्निंग कहना है सैयद हकीम का. फिलहाल अर्श का भी मैसेज आया है गुड मॉर्निंग कहते हुए. नाजनीन जी का मैसेज आया है गुड मॉर्निंग कहते हुए. अगर आपको भी गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग करना है एंड यस, आलीशान का मैसेज अभी अभी आया है गुड मॉर्निंग कहते हुए. और अगर आपको भी यस गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग करना है Then 5000-1896 is my WhatsApp number. And in any case, if you are celebrating your birthday or special day today, तो भी बताइए भाई, celebrate करेंगे यहाँ पर मिलकर आपका birthday शर्दे. Meanwhile, Jasmine Sanlis और सचिन जिगर की आवाज में अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है on Mirchi. Mike से दिल तक आप शीन के साथ बने रहिएगा. It's hot.

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
3: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
4: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
5: मिर्ची, it's hot.

अच्छा कभी सोचा है कि आपका अगर कोई माइंड रीड कर ले तो, मतलब एकदम सही सही आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बता दे। और यस, मैं कोई साईफाई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी में बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और बिल्कुल हमारे कतर में ऐसे ही कुछ रियलिटी में जादू होने वाला है, और वो कब क्या वही तो बताने आई हूँ मैं। यस, वेरी फेमस मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर आने वाली है 25th of September, और ये इवेंट हमारा मिर्ची आपका अपना मिर्ची लेकर आया है भाई। वेल, चलिए बात करते हैं सुहानी शाह के बारे में। आई एम श्योर इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर आपने इतने सारे वीडियोज इनके देखे होंगे, सलमान खान के साथ, आमिर खान के साथ, where she is absolutely reading the mind। अच्छा, interesting बात ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो magician है, but नहीं, वो अपने आप को एक mentalist कहलाती है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ tricks दिखाना नहीं उनका काम है, बल्कि observation, psychology, body language और human behavior को इतनी deeply ये समझती है कि आपको सच में लगेगा कि भाई ये कैसे कर रही है, भाई क्या, how is it even possible? बिलीव इट और नॉट, उन्होंने सिर्फ 7 साल की एज में स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। आज उनके नाम पर हजारों लाइव शोज हैं, दुनिया भर में सोल्ड आउट परफॉर्मेंसेस हैं, और अब हमारे कतर भी वो लेकर आ रही है ये मैजिक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से टिकट्स बुक करो, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे कतर में, है ना, मतलब मिर्ची पहली बार ऐसा कुछ लेकर आया है एटलीस्ट। सो यू कैन नॉट मिस सुहानी शाह, दैट इज हैपनिंग लाइव इन कतर 25th of September, और ये होने वाला है QNCC में। तब तक के लिए आप जो है फटाफट से जाइए SCT यानी सोनो सिटी से जाके अपनी टिकट्स बुक कर लीजिएगा। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah live.

अच्छा जरा सोचिए, आप टैक्सी बुक करते हैं, गाड़ी आपके सामने आकर रुक जाती है, दरवाजा खुलता है लेकिन ड्राइवर ही नहीं है उसमें, तो क्या आप उसमें बैठने की हिम्मत करेंगे? अच्छा देखो, ये कोई साइफाई या हॉरर मूवी का सीन नहीं बता रही हूँ, ये हमारे कतर का फ्यूचर है बॉस। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और कतर के ड्राइवरलेस रोबोट टैक्सी ट्रायल्स ने अब तक 2500 से ज्यादा ट्रायल राइड्स कंप्लीट की है विद एन इम्प्रेसिव 94% सक्सेस रेट। अब ये जो प्रोजेक्ट है अपने नेक्स्ट फेज में एंटर कर चुका है, जहां ड्राइवर जो है सेफ्टी ड्राइवर वो भी अब गाड़ी के अंदर नहीं रहेगा, कार्स को रिमोटली मॉनिटर किया जाए आएगा। और सिर्फ एआई ही नहीं, इन टैक्सीज के पास एक सुपर ह्यूमन विजन सिस्टम है। हर गाड़ी में 6 कैमरा, 4 रडार्स और 4 लिडार सेंसर्स लगे हैं। यानी लिडार क्या होता है, एक लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो गाड़ी को 360 डिग्री सराउंडिंग्स क्या अल्ट्रा प्रोसाइज 3D मैप बनाकर देता है। एंड कभी कभी ये इंसान की आंखों से भी ज्यादा प्रोसाइज रहता है एंड उससे पहले ही ऑब्स्टिकल डिटेक्ट कर लेता है। अब सोच के बताइए कि आप रेडी हो ड्राइवरलेस रोबोट टैक्सी में जाने के लिए, या फिर आप अभी भी किसी को ये ट्रायल सेशंस में या फिर इसके पहले दोस्त यारों को बोल के भाई तू पहले जाकर देख सब सेफ है, ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं, फिर हम जाएंगे। लेट मी नो, 5000196 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेट्स कनेक्ट हियर। मीनवाइल अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Amit Trivedi, studio hai, guitar hai, mahol hai. Ruke kis liye aap?
3: होने दो बतिया, होने दो बतिया, सीने में दिल, sorry, one more take please.
2: Take as many takes as you want, Amit Trivedi. हम तो सुनते रहेंगे. मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah, La

0: at Dairy Queen and Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: Hello, Mirchi Helpline.
4: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
3: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं एक कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
4: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
5: I'm joking.

0: Well, that was Mehmood और राघव चैतन्य की आवाज में ये गाना माशूका right here on मिर्ची. और आज की तारीख 4th of August, मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 7:04 की तरफ. और एक जबरदस्त खबर लेकर आई हूँ, स्पेशली हमारे कतर से जुड़ी हुई और कतर से ट्रैवल से जुड़ी हुई. क्या है इस गाने के उस पर, राइट हियर ऑन मिर्ची. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: देखिए, आप कोई नई कंट्री की ट्रिप अगर प्लान कर रहे होते हो तो कौन सा ख्याल पहले आता है? होटल बुक करना है, फ्लाइट बुक करना है? नहीं, वीजा प्रोसेस कितना सिंपल है ये सोचते हो आप? लेकिन जब बात हमारे कतर की हो ना, तो कतर ने इस प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल और हेसल फ्री बनाया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और हमारे कतर का हया प्लेटफॉर्म ना ग्लोबल हेडलाइंस में है।
1: क्या क्या, क्या खबर कतर?
0: खबर ऐसी है दैट हया को 2026 स्टीव अवार्ड्स फॉर टेक्नोलॉजी एक्सलेंस मिला है गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। इट्स अ सिल्वर अवार्ड। अब हया सिर्फ एक विजिटर एंट्री या वर्ल्ड कप वाला प्लेटफॉर्म नहीं रहा, आज ये एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम बन गया है जहां वीजा एप्लीकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, अप्रूवल्स, पेमेंट्स और नोटिफिकेशंस, ये सब कुछ ना एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाता है और बिल्कुल सीमलेसली। देखिए, 2025 में हया ने करीब 850,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस प्रोसेस किए हैं और एवरेज हर 35 सेकंड में एक ई वीजा प्रोसेस हुआ है, एंड दैट्स लाइक सीरियसली वेरी इंप्रेसिव। देखिए, हम कतर में रहते हुए शायद इस कन्वीनियंस के इतनी आदि हो चुके हैं कि भले वो मेट्रैश हो या हया हो या गवर्नमेंट सर्विसेज हो, काफी काम ना हमारे बस कुछ क्लिक्स में हो जाते हैं। लेकिन जब आप ना ये दूसरे कंट्रीज ट्रैवल करते हैं तब रियलाइज होता है कि पेपर वर्क, अपॉइंटमेंट्स, अप्रूवल्स कितना टाइम ले सकते हैं। इसलिए जब हया को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है तो ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये उस एक्सपीरियंस का रिकग्निशन है जो मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स एक्चुअली फील करते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। आप मुझे बताइए कि ऐसी कोई कंट्री का वीजा प्रोसेस जो 35 सेकेंड्स में होता है, अगर पता है तो बताइए मुझे। 5000196 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मीनवाइल लगाना आपका इंतजार कर रहा है और मेरे शीट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga.
1: La virba, la burga. Milci, burga. Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्र फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार? ये
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
1: तो
2: नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर, हमें गुब्बारे वाले से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए
2: यहाँ, फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है,
3: आप सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live.

देखो सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, तो शायद ये वाली गलती आपने कभी ना कभी की होगी। फर्ज करो आप ट्रैवल कर रहे हो कतर से कहीं बाहर, और एयरपोर्ट पहुंचते ही आप पहले क्या करते हो? हाँ मुझे पता है, येलो टेडी के साथ पे पहले आप सेल्फी लेते हो, पिक्चर्स लेते हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव हो, तो फिर आप मेरे ख्याल से कभी ना कभी आपने ना बोर्डिंग पास के साथ में सेल्फी लेकर या बोर्डिंग पास का पिक्चर भी जरूर पोस्ट किया होगा। लेकिन इन सबके बीच में एक इन्फॉर्मेशन जो है जो आप तक शायद पहुंची नहीं है या फिर आप मिस कर गए हैं, और वो ये है दैट कतर की नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने पब्लिक को एडवाइस किया है कि बोर्डिंग पास की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले 10 बार सोच लीजिए, क्योंकि उस QR कोड या बार कोड में सिर्फ सीट नंबर ही नहीं, कभी कभी आपकी ट्रैवल डिटेल्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस हो सकती है। एंड ऑनेस्टली ना वेकेशन का एक्साइटमेंट इतना होता है कि हम स्टोरी डालकर वेकेशन मोड ऑन बस डाल देते हैं, इतना सोचते नहीं है। लेकिन मेरा सिंपल ट्रैवल रूल ये है आपके लिए कि देखिए मेमोरीज शेयर करो, जरूर शेयर करो, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं। विंडो सीट दिखा दो, क्लाउड्स दिखा दो, एयरपोर्ट पर कॉफी पी रहे हो ये दिखा दो, बाद में पहुंचते ही डेस्टिनेशन रिवील कर दो, लेकिन इन सब के बीच में बोर्डिंग पास ना मुन्ना ना, ये बिल्कुल भी रिवील नहीं करना है आपने। अच्छा बोर्डिंग पास रिवील करने के बाद ये तो एक बात हो गई, लेकिन पूरी फ्लाइट आपकी कंप्लीट होने के बाद इस बोर्डिंग पास को आपको डिस्कार्ड भी बड़ी केयरफुली करना है, इसे पॉकेट में रखकर या यहाँ वहाँ रखकर भूल नहीं जाना है, क्योंकि QR कोड जो है उसको टेयर कर दीजिए, श्रेड कर दीजिए, एंड देन यू डिस्कार्ड योर बोर्डिंग पास दिस वे वंस योर एंटायर ट्रैवल इज कम्प्लीट। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
3: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
4: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC Supply.
7: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
8: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
7: The mentalist Suhani Shah.

0: हाय, अगर मीठी आवाज का कोई एक सिनोनिम हो तो मेरे ख्याल से वो है जावेद अली। इतनी मीठी आवाज में ये गाना। वेरी गुड मॉर्निंग कतर एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड नाउ इज द टाइम जहां पर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेलने वाले हैं हम। और आज का जो सीन लेकर आई हूँ ना मैं, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज और बहुत ही मजे की मूवी है। इसमें थोड़ा सा सस्पेंस भी है, कॉमेडी भी है, बहुत सारी चीजें। मूवी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले डायलॉग सुन लो। रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई माई बंधुओं और ये सीन सुनो।
1: लाइट्स कैमरा Scene test. Scene test.
2: Story midday, yes, no, orange, lemon, first class luggage. To stop the train, pull the chain.
3: जी
2: मेरे को इतनी इंग्लिश आती है गाली छोड़ के। चलो अभी काम की बात, पसीना सूखने से पहले पैसा मिल जाना चाहिए। पैसे का क्या है?
3: पैसे जो आप देना चाहे मुझे मंजूर है।
2: क्या उल्टा मेरे से पैसे मांगता है? या सियाने तू भिखारी से भीख मांगता है?
0: कौन सी मूवी है ये आपने बताना है। एंड आई एम श्योर यू हैव एक्चुअली गेस्ट के ये एक्टर कौन है। इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू गेस। अब ये एक्टर के बहुत सारी मूवीज आए हैं, तीन तीन के ऐसे इसमें, मतलब जो आप सोच रहे हो ये वो नहीं है, ठीक है, ये कोई और ही मूवी है। 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर। फटाफट से इधर आओ और मैसेज करके बताओ कि कौन सी मूवी है। इससे पहले आफरीन इतने हिंट्स देते हैं आपको कि आफरीन के मुंह से मूवी का नाम ही ना निकल जाए। दिस इज व्हाट हैपेंस जनरली। जो मैं इसलिए अगले गाने की तरफ सीधा जा रही हूँ।
4: कैसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए
0: अक्षत की आवाज में, ये प्यारा सा गाना ऑन मिर्ची के साथ।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहे, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं, यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
1: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है, ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
3: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
4: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
3: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah, live.

0: अरिजीत सिंह और असीस कौर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्च आपको सुनाया किसने? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट का यहाँ सिलसिला चल रहा था. सवाल जवाब था. यहाँ पर सवाल मैंने पूछा था एक ऐसी मूवी जो मेरे ख्याल से अर्ली 2000 के आसपास आई थी एंड मेरे डायलॉग सुन लेते फिर इस मूवी के बारे में एकदम विस्तार में बात करेंगे.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: सॉरी मिडडे यस नो ऑरेंज लेमन फर्स्ट क्लास लगेज टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन.
3: जी
2: मेरे को इतनी इंग्लिश आती है गाली छोड़ के. चलो अभी काम की बात. पसीना सूखने से पहले पैसा मिल जाना चाहिए. पैसे का क्या है?
3: पैसे जो आप देना चाहे मुझे मंजूर है.
2: क्या उल्टा मेरे से पैसे मांगता है? या सियाने तू भिखारी से भीख मांगता है? नेता है क्या?
0: All right. बहुत ही मजे की पिक्चर थी और इसमें एक्टर्स बहुत ही मस्त थे. 5000 1896 मेरा व्हाट्सएप नंबर है. अगर अभी भी आपको बताना है तो मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज नहीं अपना टेक्स्ट मैसेज भेजो ताकि मैं आपका मैसेज पढ़ पाऊँ. अब तो मैं वॉइस मैसेज सुन तो नहीं पाऊंगी. सो वेल बहुत सारे यहाँ पर मैसेजेस आए हैं एंड आई थिंक सो आई हैव टू गिव यू द क्रेडिट कि बिल्कुल सही जवाब दिया है. भले मोहम्मद यूसुफ खान ने क्यों ना बताया हो, देव ने बताया हो, शारिक का मैसेज आया है एंड देन नदीम का मैसेज आया है. लेट मी प्ले वन सच मैसेज हियर फॉर यू.
4: I believe the name of the movie is Aake.
0: Okay.
4: The protagonist is Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Arjun Rampal, Paresh Rawal.
0: बिल्कुल सही.
4: Thank you.
0: Yes, Paresh Rawal, Arjun Rampal, Akshay Kumar, Amitabh Bachchan, Sushmita Sen. What a star cast this was. और this movie जैसे मैंने बताया पहले कि it always kept you at the edge of your seat. मतलब अब क्या होगा, फिर क्या होगा. अंधे तीन अंधे बैंक को लूट रहे हैं. अरे यार कितनी मजे की मूवीज आती थी मेरे ख्याल से 90s और 2000 के एरा में. ऐसा कुछ बनाओ ना अभी. सिर्फ मार धाड़ी क्यों बनाते हैं. और गाने, इस मूवी के गाना भी अच्छा था. आदर्श श्रीवास्तव और वसुंधरा दास की आवाज में ये गाना आई थिंक सो अभी सुनो फिर भी कितना रेलेवेंट लगता है ना. आई मीन इट डजंट साउंड 20

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल, मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है। मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू, सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: अरिजीत सिंह की आवाज में आवारापन 2 का ये गाना अभी आपने सुना और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:04 की तरफ। और ये गाने के उस पार मैं आपको बताऊंगी कि भाई एक और जगह है जहां पर आप वीजा फ्री अब जा सकते हो, वो कौन सी जगह है कुछ ही देर में। यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज माइक से दिल तक आफ्रीन के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

वेल शरारत भरा गाना मधुवंती बागची और जैस्मिन सनलिस की आवाज में. और वो कौन सी कंट्री है जहां आप वीजा फ्री जा सकते हो? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और देखिए, एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में, जो हमारे आसपास में ही है, बहुत करीब में है, और शायद हो सकता है कि अभी तक आप वहाँ विजिट नहीं किए हो. एंड लेट मी टेल यू, मैं जीसीसी कंट्री की बात कर रही हूँ. तो फिर यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जीसीसी है तो हो सकता है कि यार गर्म ही होगा भाई और क्या. बट नो, दिस पर्टिकुलर कंट्री स्पेशली इस मौसम में बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट होती है. इनफैक्ट यहाँ पर बारिशें होती है. नो, व्हाट अ लवली वेदर इट इज. वेल आई थिंक सो यू हैव गेस्ड इट ऑलमोस्ट कि मैं बात कर रही हूँ ओमान के बारे में. और ओमान अगर आप जाना चाहते हो एंड यू आर जीसीसी यहाँ पर रेसिडेंट हो और इंडियन वीज़ा है, तो फिर आपको 14 डेज का बिल्कुल फ्री वीज़ा मिलता है. और इसका पूरी की पूरा तरह से फ़ायदा उठा लीजिए अभी के, अगर अभी आप कहीं गए नहीं हो इस बार वेकेशन पर बैक टू योर होम टाउन और लग रहा है, फोमो हो रहा है कि यार कहीं तो कहीं जाना है, एयरपोर्ट पर जाकर फ्लाइट से कहीं जाना है. सो आई थिंक सो दिस कुड बी अ गुड चॉइस, जहां आप सलाला भी जा सकते हो, विच इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस विद अ ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स एंड ग्रीनरी होती है इस वक्त पर. कैन यू बिलीव दैट, है ना? इफ आई एम राइट, वहां पर खरूफ सीजन, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड, दिस इज द सीजन ऑफ दैट, जहां पर बारिशें होती हैं और वाटरफॉल्स होते हैं एंड इट्स सो ब्यूटिफुल आउट देयर. और अब क्योंकि आपके पास अब जीसीसी का कार्ड है, यानी आप कतर आईडी है, तो उस वजह से आप वीजा फ्री भी जा सकते हो. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक नई कंट्री मैंने बता दी, नहीं, एक अच्छी खासी कंट्री मैंने बता दी आपको, जो आपको हमेशा से पता है लेकिन ध्यान में नहीं आता है ना कभी कभी जाने के लिए, अब डाल दिया मैंने. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ. माइक से दिलते आप फ्रीन के साथ बने रहिएगा और अलीशा चेन्नई की आवाज में ये गाना एंजॉय कीजिए.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na pierdva la burka. Mirchi, burka.
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ, ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ ना सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
1: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना
1: है? यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना?
1: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
2: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
1: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
2: सर, इसका हीरोइन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कुछ हीरोइन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी, जी
1: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स पटाक।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
8: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

श्रुति रानी की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, आप सुन रहे हो और समझदार को इशारा काफी है और मुझे सुनने वाले सारे लोग बहुत समझदार हैं। यस, वेल 4th of August आज की तारीख एंड इट्स टाइम कि मैं अब आपको एक्सचेंज रेट सुनाऊं आज के। सो एक्सचेंज रेट कुछ इस तरह से है आईपे के। वेल 1 Qatari riyal के बदले आपको मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.14, वहीं जना पाकिस्तानी रुपीज आपको मिल रहे हैं 76.35, बांग्लादेशी टाका आपको मिल रहे हैं 33.97 और 1 Qatari riyal के बदले आपको मिल रहे हैं श्रीलंकन रुपीज दैट इज 92.10 एंड नेपाली रुपीज आपको मिल रहे हैं 41.78। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियां का नंबर वन फॉर्मूला 1 एंड ओनली 89.6 मिर्ची 1 पर। माइक से दिल तक आफ्रीन के साथ इट्स हॉट।

0: में जी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
3: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
4: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, ई रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। TNC Supply.

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
0: The Mentalist Suhani Shah live.

0: खुशहाल और वैशाली माने की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी बाजीराव मस्तानी। हाँ, पहले इट वॉज फीचर्ड ऑन प्रियंका चोपड़ा एंड दीपिका पादुकोण और दोनों इतनी प्यारी लग रही थी इस मूवी में कि उफ मजा ही आ गया था। वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। या वेरी गुड मॉर्निंग कतर एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्टरनून का सुन रहे हैं आप और मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स टाइम कि मैं मेरा वो मिस्टीरियस जो बॉक्स है वो खोलूं और आपके लिए एक चैलेंज एक गेम और एक क्विज पेश करूं। सो वेल लेट्स सी कि आज के मेरे मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में क्या है। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। आज मेरे बॉक्स से तीन वर्ड्स निकले हैं, ऐसे तीन वर्ड्स जो आपको सीधा मूवी की तरफ इशारा करेंगे। वो कौन सी मूवी है? सो आज बस मैं तीन वर्ड्स बताने वाली हूँ आज और आपने गेस करना है कि आफ्टरीन कौन सी मूवी की बात कर रही है। तो मेरा पहला वर्ड है हीरोइन, एक पॉपुलर हीरोइन। दूसरा वर्ड है जूनियर आर्टिस्ट, ओके। और तीसरा वर्ड है आग, फायर। कौन सी मूवी है ये बताओ बताओ। 5000 1896 इज माई नंबर। ऐसी कौन सी मूवी है जहां पर एक पॉपुलर हीरोइन है, एक जूनियर आर्टिस्ट है और आग है? फटाफट से आपके जवाब का मैं इंतजार कर रही हूँ। मैसेजेस आने हो गए हैं शुरू और काफ़ी हद तक लगभग सही मैसेजेस ही आ रहे हैं, लेकिन आप जो है सोचो सोचो और मुझे बताइए। व्हाट्सएप कीजिए 5000 1896। मीनवाइल माइक से दिल तक आफ्रीन आपके साथ बनी हुई है और माधुरी क्या बात कर रही है? माधुरी दीक्षित बॉलीवुड बोल डाल कमिंग अप नेक्स्ट ऑन मिर्ची इट्स हॉट। बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड
1: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
2: एलिगेंस एंड दिस एंड दैट एवरीथिंग इनसाइड इज मी इज लाइक अ मैड पर्सन एंड आई लव मैड कॉमेडीज एंड आई लव दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस व्हिच आर लाइक लार्जर देन लाइफ। कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, यू नो, सब पागल अनहिंज्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स।
1: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट। बॉलीवुड बोल डाल,
3: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग

0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है और यहाँ पर मेरे साथ मिलकर आप मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स वाला गेम खेल रहे थे, जहाँ पर हर रोज मेरा ये जादुई बॉक्स खुलता है और उसके उसमें से निकलता है एक नया क्विज. कहता है ना, सरप्राइज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, और उसी तरह से हर रोज कुछ नया लेकर आने की इसी उम्मीद में आपके लिए आज जो मिर्ची बॉक्स खुला है मेरा, उसमें से निकला क्या है? मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स. उसमें से तीन शब्द निकले हैं आज, ऐसे तीन शब्द जो एक बॉलीवुड पूरी मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं, एंड दैट्स गुड इनफ टू टेल विच मूवी इट इज. सो हियर आर द थ्री वर्ड्स, जहां पहला वर्ड इज अ पॉपुलर हीरोइन एन एक्ट्रेस, द सेकंड वर्ड इज अ जूनियर आर्टिस्ट, एंड द थर्ड वर्ड इज आग फायर. कौन सी मूवी है ये? लेट्स हियर इट फ्रॉम अ लिसनर. कम दोस्त.
1: हाय, गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग.
1: ओम शांति ओम.
0: बिल्कुल सही. द मूवी इंडीड इज ओम शांति ओम. और ये किसने मैसेज किया है? ये विवेक ने मैसेज किया है. साथ ही साथ यहाँ पर ताहिर का भी बिल्कुल सही मैसेज है. देन आई हैव मोहम्मद यूसुफ खान टेलिंग द राइट मैसेज. देन हु इज दिस? भाई अपना नंबर नाम लिखा करो अगली बार से. मीनवाइल जहाँ ओम शांति ओम की बात होती है, बहुत सारे एक्टर्स इसमें थे. गाने में दीवानगी दीवानगी है ना, जहाँ पर संजय दत्त, सलमान खान, सैफ अली खान, इतने लोग थे. लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फराह खान की बहुत इच्छा थी कि भाई मैं तीनों खान को एक साथ स्क्रीन पर लाकर ही रहूँगी. और उन्होंने आमिर खान को भी अप्रोच किया था, लेकिन आमिर खान बीइंग आमिर खान, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया फॉर दिस कैमियो अपीयरेंस. कोई ना, ऐसा एक दिन जरूर आएगा जब बड़े पर्दे पर हम तीनों खान को एक साथ देखेंगे. मीनवाइल हम रेडियो पर ये गाना तो सुन सकते हैं केके की आवाज में. अ लवली सॉन्ग फ्रॉम द मूवी ओम शांति ओम, राइट इट ऑन मिर्ची. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: क्या बताओ सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूं?
1: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5 से 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।

0: वेल वेल वेल माय फेवरेट सिंगर संजू राठौर की आवाज में ये गाना आपने सुना और राइट हियर मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:04 की तरफ।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: देखो जब मूड ऑफ रहता है तो क्या करने का मन करता है आपका? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कभी ऐसा हुआ है कि दिन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहा है, बॉस ने डांट दी, गाड़ी भी खराब हो गई है, काम सही से बन नहीं रहे हैं, और तब आप क्या सोचते हो, यार ना बिरयानी खाने का मन कर रहा है या फिर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। ऐसा होता है क्या आपका? क्योंकि ऐसा होना चाहिए, जब स्ट्रेस होता है ना अमूमन लोगों को तो किसी का दिल ना लौकी या सैलड खाने का मन नहीं करता। सबको अपना अपना ना कम्फर्ट फूड ही याद आता है, और मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऐसा रिसर्च कहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्ट्रेस के टाइम पर हमारा ब्रेन उन चीजों की तरफ खींचता है जो हमें कंफर्ट और फैमिलियरिटी फील कराती है। इसलिए किसी के लिए वो गर्मा गर्म चाय हो सकती है, किसी के लिए बिरयानी हो सकती है, किसी के लिए चॉकलेट्स जैसे मेरे लिए और आपके लिए वो क्या चीज है जो आपको कंफर्ट देती है? आप भले ही कितने भी ज्यादा स्ट्रेस में हो और सडनली आपको ऐसा लगता है कि हमारा आधा टेंशन तो खत्म ही हो गया भाई ये मजेदार बिरयानी खाकर या फिर ये मजेदार कुनाफा खाके। उफ, मैं तो फिलहाल कोई स्ट्रेस में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये सारी चीजें खाने का मन कर रहा है। से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और व्हाट्सएप करके मुझे बताइए कि आपका कंफर्ट फूड क्या है जो आपको स्ट्रेस में भी बिल्कुल सुकून देता है। 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर। Meanwhile, सुंदर रहेगा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La fiesta a la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो,
4: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार, कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
3: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
4: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
3: क्या आप पागल हैं क्या?
4: पागल आप है, पागल आप है, पागल आप है
3: क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे,
4: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
3: हेलो,
4: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया, फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
5: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए,
4: आज के बाद घर से आ गई ना तो मैं बता दूं तेरे को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah.

देखो मुझे सुनने वाले सारे पेरेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से एक परफेक्ट स्कूल आपके बच्चे के लिए कैसी होनी चाहिए? वो जो अच्छी पढ़ाई थे, या फिर वो जिसकी फीस बजट में हो, या फिर वो जो घर के सबसे करीब हो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और सच कहूं तो इन तीनों से पहले एक और चीज जरूरी है, वो है सही चॉइस। क्योंकि हर बेस्ट स्कूल हर बच्चे के लिए बेस्ट हो ये जरूरी तो नहीं है ना। और अगर आप कतर में स्कूल या नर्सरी ढूंढ रहे हो तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन का वेयर इज माई स्कूल ऑनलाइन सर्विस आपके काफी काम आने वाला है और आपका होमवर्क बचा सकता है। पोर्टल पर आप गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट नर्सरीज और एजुकेशनल सेंटर्स सर्च कर सकते हैं। और सिर्फ नाम की लिस्ट ही नहीं है, आप लोकेशन, एजुकेशनल लेवल, करिकुलम, म्युनिसिपैलिटी और स्टूडेंट कैटेगरी जैसे फिल्टर्स लगाकर ऑप्शंस को नैरो डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं पेरेंट्स से जरूर कहूंगी, पोर्टल आपको ऑप्शंस दे सकता है, डिसीजन नहीं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद स्कूल विजिट जरूर कीजिएगा। सिर्फ क्लासरूम्स और फैसिलिटीज ही नहीं, थोड़ा सा कल्चर भी चेक कीजिए। टीचर्स बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कम्यूट प्रैक्टिकल है या नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपोजर कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप अपने बच्चों को वहां जेन्युइनली थ्राइविंग इमेजिन कर पा रहे हैं या नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली कैसा होता है ना, द राइट स्कूल इज नॉट नेसेसरी द मोस्ट पॉपुलर स्कूल, इट्स द वन दैट फिट्स योर चाइल्ड। और क्योंकि अब सेप्टेम्बर आएगा, कुछ करिकुलम्स के नया एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है, एंड आई एम श्योर एट दिस स्टेज आप लोग स्कूल्स ढूंढ रहे होंगे, या फिर ऑलरेडी इंटरव्यूज दे रहे होंगे, या फिर आई एम श्योर कुछ ऐसे एक्साइटेड पेरेंट्स होते हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए अभी से अपना होमवर्क शुरू कर रहे हैं। देन दिस इज द पोर्टल एंड दैट इज द मारिफ पोर्टल। मैं हूं आफरीन, माइक से दिल तक, राइट इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
3: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
4: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
3: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है. I think he is one of those people.
2: तृप्ति डिमरी spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.

0: कुछ गाने ना अंडररेटेड होते हैं और ना अच्छे होने के बावजूद भी ना इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। उनमें से ये एक गाना है जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाज में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि नहीं, ये गाना ज्यादा पॉपुलर होना भी नहीं चाहिए ताकि कोई इसके साथ फिर से छेड़खानी ना कर दे कुछ उसका नया वर्जन या रीमिक्स या सब अदर थिंग बनाकर। नहीं नहीं नहीं, खूबसूरत सा गाना इशक जादे का टाइटल ट्रैक राइट हियर भी आपने सुना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और सिंपल सा ख्याल, सिंपल सी शायरी का वक्त हो गया है जो इस वक्त पर मैं लेकर आती हूँ अक्सर अपनी डायरी से कुछ अल्फाज।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, उल्फत बदल गई नीयत बदल गई, उल्फत बदल गई नीयत बदल गई, खुदगर्ज जब हुए फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों पर डालकर कुछ लोग समझते हैं, अपना कसूर दूसरों पर डालकर कुछ लोग समझते हैं, हकीकत बदल गई। क्या बात है, बड़े ही डीप लाइंस, और आजकल की दुनिया की हकीकत ही समझ लीजिए इस लाइंस में लिखी हुई है। मैं हूं आफरीन आपके साथ अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, कलंक मूवी का टाइटल ट्रैक प्लेइंग नेक्स्ट फॉर यू।
2: हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहे
0: ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
1: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
3: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: The mentalist Suhani Shah.

मतलब अरिजीत सिंह और एड शीरन की आवाज में ये गाना था राइट हियर ऑन मिर्ची. और और बहुत ही एक्साइटमेंट है हम मिर्ची वालों में. भाई देखो, हमारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है ना, यानी कोई इवेंट आने वाला रहता है ना, तो ऑफिस का माहौल कोई शादी वाले घर से कम नहीं होता है. और ऐसे ही कुछ चल रहा है फिलहाल हमारे यहाँ पर, क्योंकि यार मेगा इवेंट ऑफ द ईयर 25 सितंबर को सुहानी शाह आने वाली है. और आई एम श्योर सुहानी शाह के

कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पर, जहां पर ये बंदी इतनी बखूबी से आपके दिमाग में घुसकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बता देती है, एंड इट विल एब्सोल्युटली लीव यू माइंड, लाइक एकदम ऐसा माइंड ब्लो हो जाएगा आपका कि कैसे, हाउ इज इट इवन हैपनिंग. ये सवाल पूरी टाइम हमेशा आपके दिमाग में चलता रहेगा कि यार ये कैसे कर रही है. और ये देखने के लिए तो भाई लाइव जाना जरूरी है ना, कि भाई देखो हमने इंस्टाग्राम पर वगैरह वीडियोस तो देख लिए रहेंगे, वीडियो में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन नो बॉस, जब बात लाइव की आती है तब दूध का दूध पानी का पानी होता है. दैट्स व्हाट इज गोना हैपन. सुहानी शाह इज गोना बी लाइव हियर ऑन 25th of September एट QNCC. तो आपने क्या करना है, SCT जाना है, सुनू सिटी जाना है, वहां जाकर टिकट्स बुक कर देनी है, क्योंकि ये दिस इज नॉट अ म्यूजिक शो, दिस इज नॉट सम अदर परफॉर्मेंस शो, भाई वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस रहेगा ये आपके लिए. तो ये एक्सपीरियंस को अपने हाथ से जाने मत दीजिए. और देखिए फिर बाद में जब इवेंट नजदीक आता है ना, तब आप मेरे पास आते हैं आफरीन, कुछ हो सकता है टिकट का या फिर कुछ डिस्काउंट ही मिल जाए तो बता दो. डिस्काउंट मिल रहा है और अभी मिल रहा है 10 दिन राइट नाउ. ऑलरेडी एक दिन हो चुका है, अब से 10 दिन के बाद डिस्काउंट्स बंद हो जाएंगे. और अब फिलहाल 20% डिस्काउंट्स पर आपको टिकट्स मिल रही है SCT यानी स्नूनो सिटी पर. सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी एंड फटाफट से अपनी टिकट्स बुक करिएगा. एंड आई थिंक सो दिस इज अ कम्प्लीट फैमिली पैकेज है, मतलब आप पूरी फैमिली के साथ जा सकते हो, बच्चों के साथ जा सकते हो, बच्चों के अंदर की वो क्यूरियोसिटी भी बिल्कुल जाग जाएगी कि भाई हाउ इज दिस इवन हैपनिंग. तो बस वो सारे सवाल का जवाब वहां पर मिलेगा 25th of September QNCC लाइव इन कतर. सुहानी शाह मैं हूँ आफरीन आपके साथ, और कुछ ही देर में जुड़ने वाली है आपके साथ अंशुर विथ हर मीठी मिर्ची. बने रहेगा हमारे साथ और मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा, क्या करूं?
1: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा। उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो।

0: कभी कभी जब मैं ये गाना सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म नहीं, ये गाना जो है ये अपने आप में एक लव स्टोरी है ना. मतलब इतनी खूबसूरत बात, इतने प्यारे अल्फाज. भाई इश्क का इजहार कोई इस तरह से करे, हाय मतलब किसे कुछ और चाहिए. एक बात बताओ, सारी पिकअप लाइंस जो है ना इसके आगे फीकी पड़ती हैं. वहीं सिद्धार्थ मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:07.
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: वैसे अगर वक्त की बात करें तो ये जो है काफी रफ्तार के साथ निकला ही जा रहा है. कुछ खास बात है, चलिए जो इस वक्त हम आपसे कर ही लें.
2: मिर्ची अंशु.
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आर्जे अंशु विथ यू. घड़ी का काटा जहाँ पे इस वक्त ये इशारा कर रहा है कि 10 के पार आप और हम पहुँच ही चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ये मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि आफरीन, याद है आज से एक महीने पहले जब वेकेशंस शुरू हुए थे तब दिल में इतने सारे ख्याल आ रहे थे, भाई 2 महीने की छुट्टी है, 2 महीने गर्मी के कैसे निकलेंगे, कहाँ जाना है, कैसे करना है. एंड यार देखते देखते आधा पड़ाव जो है हमने पार कर ही लिया. एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही अगस्त का महीना है, ये छुट्टी का पीरियड जो है और ज़्यादा जल्दी निकल रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है.
3: आई होप ये अगस्त जल्दी निकले, क्योंकि जिस तरह से ये गर्मी और शदीद हो गई है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, अब कहीं बाहर के प्लान्स बनाना और बस बिल्डिंग से अपने गाड़ी तक पहुंचना, मतलब कहीं से इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट. तो भाई बस अब तो मैं यही चाहती हूँ कि फटाफट से चुटकी बजा के निकल जाए.
0: वेल आज सुबह की अगर मैं बात करूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि सिर्फ गाड़ी को साफ करने के लिए मैं घर से बाहर निकली थी. विद इन अ स्पैन ऑफ 5 मिनट मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ,
3: 5 मिनट ज्यादा ही बोल दिया रहेगा,
0: नीचे तक कैसे ना लिया मैंने
3: पसीने में. सो वेल यस, ह्यूमिडिटी इज एट द हाईएस्ट, इवन कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट इज सेइंग दैट. एंड एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि भाई पानी पीते रहो. एंड एट दिस पॉइंट चलो मैं जा रही हूँ पानी पीने. बाय.
0: आप भी निकल रही है पानी पीने, आराम फरमाने. मैं एक काम करती हूँ, आपकी गाने, अच्छे गाने की प्यास जो है ना ये जरा बुझाती हूँ. के एस चित्रा की आवाज, बहुत ही प्यारा सा गाना है. चलिए करते हैं शो की शुरुआत इस गाने के साथ. मीनवाइल अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो फटाफट से गुड मॉर्निंग, हाई हेलो भेजने का वक्त जो है वो हो ही चला है. 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची1 कतर, मिर्ची अंशु. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: हेलो
1: हेलो सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
0: क्या हो गया
1: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ले मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
0: क्या हुआ क्या है
1: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
0: कब दिया था आपने?
1: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
0: क्या प्रॉब्लम क्या है?
1: चंद्र फोन लेके आ,
0: डिस्प्ले आ रहा है।
1: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
0: फोन आ रहे हैं और ओके।
1: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
0: बेल बज रही है।
1: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
0: अरे आपने लिया कहाँ से था?
1: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
0: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
1: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
0: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
1: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
0: थोड़ी ना
1: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
0: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
1: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
0: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
1: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
0: फोन थोड़ी ना होते
1: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
0: फोन मत करिए,
1: यहाँ फोन मत करिए यार।
2: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
0: हेलो
2: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
0: अरे सर काम का टाइम है,
2: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
0: कुकड़ू को।
2: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

0: Well, Romy and Tanishq Bakshi ke khubsurat si awaaz and still ye gaana kya kamaal power pack lagta hai yaar from the film Teri Baaton Mein Aisa Uljha Gaya. वैसे अगर लाल पीली आंखों की मैं बात करूं तो ये आंखों का दोनों रंग जो है ना हमने जरूर देखा है.
1: मिर्ची अंशु
0: वो कहते हैं ना गुस्से में लाल बम हो जाना. भाई किसी का चेहरा लाल हो या ना हो लेकिन हाँ गुस्से में आंखें जो है वो जरूर हमने लाल होती हुई देखी है. एंड इसके अलावा जब जब शख्स बीमार पड़े जरा देखो आंखों में पीलापन छाए हाय बस ये रंग जो है ना तब आंखों का मुझे कभी पसंद ना आए. हैविंग सेड दैट अंशु है एक बार फिर से आपके साथ. एंड जिंदगी में इस वक्त आंखों के रंग की अगर मैं बात करूँ तो कोई मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ तो वो है गुलाबी. एंड अगर सेहत के रंग की बात करूँ तो वो जरूर लाल हो. इसमें मैं कहीं कोई कमी ना छोड़ूंगी लेकिन कब कहाँ कैसे चलिए जी इसकी कहानी इसकी दास्तां आपके बीच इस वक्त पेश कर ही दें. पर एक बात कतर की जो मुझे बहुत खास बहुत स्पेशल लगती है वो बस यही कि चाहे मौसम क्यों हो कैसा भी क्यों ना हो हर एक मौसम में हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा खास एंड एक्साइटिंग इस देश में लाइनअप होता है कि लगता है कि एंटरटेनमेंट का खजाना जो है ना हर वक्त हमारे लिए खुला हुआ है यानी कि ओपन है. तो भैया आप जो है इस वक्त कुछ करें या ना करें लेकिन डेट जो है मार्क कर लें क्योंकि डेट्स बाद में मिलेंगे कि नहीं ये मैं नहीं जानती. वेल आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल डेट्स एग्जीबिशन अभी तक के सबसे बड़े एडिशन के साथ सूक वाकिफ में ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है. ईस्टर्न स्क्वायर आपको पहुंचना है जहां पे फुल्ली एयर कंडीशन तंबू के नीचे अगर आपको कुछ मिलेंगे तो कतर के ढेर सारे लोकल डेट्स जहां पे एक तरफ डेट्स हैं मैं कल ही विजिट की वहीं दूसरी तरफ हनी की भी गजब वैरायटी है यार. एंड देखो डेट्स तो आप खरीद पाओगे रेट्स जो है हर एक वेंडर के पास आपको सेम मिलेंगे. बार्गेनिंग का सिलसिला जो है यहाँ पे जरा कम चलेगा लेकिन इसके अलावा डेट्स से बनी हुई बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं बहुत सारे बिस्किट्स हैं डिशेस हैं जो आप जरूर एंजॉय करेंगे. तो जाइए यार शाम के वक्त अगर दिल करे क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है तो अंशु ने इसका हल जो है आपकी जिंदगी में ला ही दिया एंड साथ ही पहुंचाई दिया. चलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे दी 10th August तक ये चलने वाला है. अब एक काम करती हूँ सुबोध शर्मा की आवाज में ये ब्रांड न्यू ट्रैक भी मैं आप तक पहुंचाती हूँ. एंजॉय बंदी का नाम अंशु.
2: मिर्ची फ्रेश माल
3: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून.

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
3: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
4: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: खूबसूरती आवाज में बड़ा लवली बड़ा ब्यूटीफुल ट्रैक इट इज. सच कह रही हूँ यार, 90s के गानों में जो सुकून है ना यार, वो जो नशा है ना, हाय महसूस कर पाना आज के डेट में थोड़ा मुश्किल है ना.
1: मिर्ची अंशु
0: मतलब ये बात तो हमने सुनी है ना कि चारों खाने चित्त कर देगी. नहीं, तुम्हारी बीवी सिर्फ ये काम नहीं करती, उससे भी बेहतर तरह से किसी और को भी आता है. बोला जी अंशु है आपके साथ. एक बार आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मैजिकल एक्सपीरियंस मिर्ची लेकर आने वाला है जिसे आप न जाने कितने सालों तक याद रखने वाले हैं. यार कभी सोचा है कि इंसान की दिली सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है किसी और को लेकर? भाई अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बस एक ये पावर आ जाए कि किसी और के दिमाग में क्या चल रहा है हम ये जान पाएं. कभी अपने बॉस के दिमाग में, दोस्त यार के दिमाग में, खासकर अपने घर वालों, स्पेसिफिकली अपने स्पाउस या तो अपने पार्टनर के दिमाग में. देखो आपके और मेरे अंदर ये सुपर पावर तो है नहीं. आपको लगता है कि शायद आप समझ रहे हैं, लेकिन अक्सर जो आप समझते हैं वो बहुत सालों तक याद रखने वाले हैं. यार कभी सोचा है कि इंसान की दिली सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है किसी और को लेकर? भाई अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बस एक ये पावर आ जाए कि किसी और के दिमाग में क्या चल रहा है हम ये जान पाएं. कभी अपने बॉस के दिमाग में, दोस्त यार के दिमाग में, खासकर अपने घर वालों, स्पेसिफिकली अपने स्पाउस या तो अपने पार्टनर के दिमाग में. देखो आपके और मेरे अंदर ये

ना कोई मैजिकल पावर भी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई तो नॉलेज है जिसके दम पे ये आज दुनिया भर में अपना नाम काफी ऊपर कर चुकी है। यही एक्सपीरियंस देने के लिए आपको अब कतर आ रही है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह लाइव इन दोहा। यार बिल्कुल ठीक सुना आपने, 25th of September वो तारीख होगी जब भारत की सबसे बड़ी मेंटलिस्ट कतर आएंगी एंड हमारे बीच अपना ये हुनर पेश करेंगी, बहुत कुछ हमें सिखा जाएंगी। उससे भी खास बात यह है कि इस वक्त चल रहा है अर्ली बर्ड ऑफर, जिसमें 20% डिस्काउंट है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ऑफर्स हैं जहाँ पे 150 रियाल्स में आपको दो टिकट्स भी मिल रही हैं। आपको लगता है अगर आपको इस इवेंट को अटेंड करना है, अपने आप को एक अमेजमेंट वाले जोन में डालना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 20th of August तक का टाइम है कि आप इस अर्ली बर्ड डिस्काउंट को अवेल कर पाए, क्योंकि इसके बाद एंड तक ये ऑफर वापस नहीं आने वाला। जाइए अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, प्रोफेशनल्स सबको साथ लेकर आइए। टिकट्स बुक करने के लिए एक ही काम करना है, snoonucity.com पर जाकर, scity पर जाकर आपको टिकट्स बुक करनी है। 20th of August दी अर्ली बर्ड अवेल नहीं कर पाएंगे, उसके बाद जाइए यार। वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल। अरिजीत सिंह एंड शिल्पा राव की आवाज में मैं तो सेवन की तैयारी में चले आ, आप टिकट बुकिंग के लिए निकले आ। एंजॉय।

0: काश हम भी ऐसा कर पाते। हर दिन की नई शुरुआत। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली सपने में प्रॉब्लम है, आई डोंट रिमेम्बर माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते. तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की.
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू.

0: Well, Sanju Rathod ki power pack awaz and what a kick-ass track it is. Chaliye, pyara sa gaana to maine aapko suna diya, lekin kuch khas ab sunane ki taiyari kar li jaye.
1: Mirchi Anshu.
0: यार देखो, एक बात तो आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि फिल्में जो है ना, हमारी ज़िंदगी में बड़ा कमाल का रोल प्ले करती हैं यार। ना जाने कब एंटरटेनमेंट से शुरू हुआ ये सिलसिला, लाइफ का बहुत बड़ा कभी लेसन भी बन गया, ये बात हमने सोचा ही नहीं था। कब मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन के चलते किसी रोते हुए को हंसाना हमने सीख लिया, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्ती से प्यार तक का सफ़र फिल्मों की कहानी ने हमारी ज़िंदगी में किस तरह से छोड़ा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो चलिए एक काम करते हैं, बॉलीवुड की दुनिया में एक बार फिर से डाइव इन करते हैं। आपके बीच कोई तो खास एक डायलॉग, एक कॉन्वर्सेशन है जो पेश करते हैं, आपको सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, बस मुझे ये बताना है कि ये है तो है किस फिल्म से। बड़ा ही कमाल का है यार ये पूरा का पूरा इनका प्रेजेंटेशन एंड ये लाइन। एंड अगर आपको लगे कि आपने फिल्म का नाम पहचान लिया है, एंड ये शख्स कौन है ये जान लिया है, तो करेक्ट आंसर भेजने के लिए मुझे तैयार हो जाएगा 5000186 पर, 5000186। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। सो हियर वी गो।
2: यादाश्त भी कितनी अजीब चीज होती।
0: एक बार फिर से।
2: यादाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। यादाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करे तो याद नहीं आती।
0: क्या कमाल इन सही की बात की है इन्होंने। अब इसका एनालिसिस जो है आप और हम मिलकर अब से कुछ देर में करेंगे कि किस तरह से हमारी जिंदगी में 101% फिट बैठता है। लेकिन अभी फिलहाल आप मुझे ये बताएंगे कि ये है तो है किस फिल्म से, एंड साथ ही किस एक्टर पर पिक्चराइज्ड है। चलिए घंटे के उस पार दस्तक देते हैं।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: ਕਿੰਨੇ ਖਿੱਚਿਆ

0: वह सिद्धार्थ बसरूर की खूबसूरत सी आवाज़ और मदहोशी से जेन्युइनली भरा ये गाना, ये तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जिस मदहोश आवाज़ को मैंने आप तक पहुंचाई थी, ज़रा उनकी बात पे गौर फरमाने की कोशिश कर लें।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, पता है क्या, मुझे ना जिंदगी में अगर सबसे एक्साइटिंग कोई बात लगती है तो बस उस बात पे गौर फरमाना जिसने कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में किसी तरह का इम्पैक्ट छोड़ा है। एंड सच कहूँ यार, ऐसे पंच लाइंस को अगर आप सोचने समझने की कोशिश करें तो मुझे एक बात बताएं, हमारी फिल्मों से ज़्यादा बेहतर कौन ही होगा जो हमारी लाइफ में बहुत अच्छी बातों को एंटरटेनमेंट के साथ पेश कर पाए। वल आज अंशु एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुकी है। अब से कुछ देर पहले कोई तो खास सी बात है जो एक फिल्म के डायलॉग के जरिए मैंने आप तक पहुँचाई थी, एंड आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से, किस एक्टर पर पिक्चराइज्ड है। तो चलिए एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, जल्दी से वो कॉन्वर्सेशन, वो डायलॉग जो है मैं एक बार फिर से पहुंचा दूं। एंड अगर आपको लगे कि अभी भी सुनते सुनते आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किस फिल्म से है, तो मुझ तक करेक्ट आंसर भेज देना 5001896 पर। एंड हियर वी गो विद दिस वंडरफुल वर्ड।
2: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
0: क्या गजब है, सही बात है। बहुत सारे लोग इस वक्त अपनी मुंडी हिला रहे हैं, लेकिन सही जवाब बता दें।
3: The name of the movie is जब तक है जान।
4: Good morning, this is साहिल। The movie name is जब तक है जान, and the dialogue is from the great शाहरुख खान, my favorite। Thank you।
0: क्या बात यार, आप दोनों ने जो कहा, इसके अलावा जितने लोगों ने लिखकर भी जवाब दिया, ये पूरी तरह से सही। अगर इस फिल्म की मैं बात करूं तो भाई जब तक है जान, एंड ये बात अगर किसी ने बहुत खूबसूरत तरह से कही तो वो है यश चोपड़ा, क्योंकि अगर उनकी लास्ट डायरेक्टोरियल फिल्म की मैं बात करूं तो आखिरी सांस तक उन्होंने बहुत खूबसूरत तरह से बताया कि अच्छी फिल्में मैं बनाऊंगा और किस कदर बनाऊंगा। यश चोपड़ा साहब ने एक बार फिर से रोमांस को अलग लेवल पर पहुंचाया, एंड इस फिल्म अगर आपको कोई नजर आए तो वो है शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा। एक मैजिकल स्टार कास्ट के अलावा अगर लेजेंडरी म्यूजिक की बात करें तो वो है एआर रहमान का, एंड लफ्जों के जादू की बात करें तो भाई वो रहा गुलजार साहब का। क्या आपको मालूम है कि इस फिल्म में और खासकर इस डायलॉग में जो बात कही गई ना कि याददाश्त भी क्या कमाल चीज होती है कि कभी एक छोटी सी बात याद करने की कोशिश करें तो वो याद रहती नहीं है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर भुलाती नहीं। भाई साहब, घर से जब निकलते हो सामान की लिस्ट जो आपको दी जाती है कि क्या लाना है क्या ही लाना है, 10 बार रिमाइंडर के बाद भी आप जो भूलते हो, हाय ये हुनर आपकी जिंदगी में आया तो आया कहां से। एंड इसके अलावा औरतों से भी मैं ये बात कहना चाहूंगी कि बाल में वो ना ये हेड बैंड कहां रखता है, हमें वो याद नहीं रहता, वो घर के वो आलू प्याज कभी कभी किस जगह रख दिए वो याद नहीं रहते, लेकिन किसने कब क्या किस तरह बात कही थी, आधी नींद से उठाकर भी हमें कोई पूछे ना, भाई वो 50 साल क्या 80 साल की उम्र में भी हम भूलते नहीं। नहीं, मैं उस उम्र के पड़ाव में पहुंची नहीं हूं और कभी पहुंचूंगी नहीं, फॉरएवर यंग वाली फिलॉसफी पे यकीन रखती हूँ, लेकिन हाँ लोगों से सुना जरूर है कि औरतों के अंदर ऐसा काफी हुनर होता है। क्या आपके घर में भी ऐसा कुछ है? 5001896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम, मिर्ची वन का थरिया, मिर्ची अंशु। मीनवाइल रब्बी शेरगिल की आवाज, फिल्म का नाम जब तक है जान, प्यारा सा गाना, चलिए करते हैं एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बकवा दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब नहीं।
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे,
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
6: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

आशा भोसले एंड अदनान सामी की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक की मैं बात करूँ उस दौर में, उस ज़माने में, 90s केरा में जब ये गाना आया था, भाई एक अलग मैजिकल एक्सपीरियंस। एंड खासकर अगर आपको इस गाने का पिक्चराइजेशन याद है, कितना खूबसूरत सा पिक्चराइजेशन यार, मतलब कहीं ना कहीं मुझे याद है कि इन गानों को देखकर हम ना टेलीविजन स्क्रीन में इंतज़ार किया करते थे कि कब उस म्यूज़िक चैनल में एक बार फिर से ये गाना आएगा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सारे फिंगर्स में अवेल होने वाली फैसिलिटीज़ तो नहीं थी। एंड शायद इंतज़ार का फल जो है ना, काफ़ी खूबसूरत था। मिर्ची अंशु यार, पता है क्या, कभी कभी ना मेरे जहन में एक ख्याल आता है कि जब चीज़ें बहुत इजीली हम तक नहीं पहुंच पाती थी या हमें नहीं मिल पाती थी, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता था लाइफ में वो काफ़ी अलग, काफ़ी अच्छा होता था। अब देखिए ना, अगर आज के दौर को देखने की कोशिश करें, अगर कोई भी अच्छा सा गाना सुनना है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है क्या करना है, अपना फ़ोन करना है, उस डब्बे को बस छूना है, देखें गाने जो हैं अपने आप कैसे बजने लगते हैं। लेकिन स्टिल मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस जब आप एक रेडियो चैनल सुन रहे हैं एंड अचानक से आपका फेवरेट गाना प्ले हो जाए, भाई वो जो खुशी मिलती है ना, वो जो एक अंदर कलेजे में ठंडक कहें या पेट में गुदगुदी कहें, भाई वो फीलिंग जो है ना, डायरेक्टली खुद प्ले करने में कभी हो ही नहीं सकती। एंड शायद आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रेडियो वही एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में लेकर आता है, वो अनएक्सपेक्टेड सी बात, वो अनएक्सपेक्टेड सा गाना, वो एक ऐसा ख्याल जिसके बारे में आपने सोचा नहीं लेकिन शायद आपको सबसे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत थी और वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए। चलिए आज ना मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर रेडियो की बात करूँ, आज की डेट में जब आप हमें सुनते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं, मिर्ची की वो कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आपको बहुत खूबसूरत लगती है, प्लीज़ शेयर यार, मज़ा आता है। अगर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें उस वक्त, अगर सामने वाला कहे कि हाँ यार आपकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगी, तो और एक इंस्पिरेशन मिलता है कि क्यों ना ज़रा और अच्छी तरह से काम किया जाए। सो आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, 5000180196 5000180196। मिर्ची की कौन सी बात है जो आपको बेहद पसंद है, इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। मीनवाइल आदित्य रखारी की आवाज में एक प्यारा सा गाना आप तक पहुंचाती हूँ, कुछ देर में होंगी और भी बातें, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
3: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
4: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: पल हदूर की खूबसूरत सी आवाज़ शेख खुशहाल का साधन और लवली ट्रैक रज़ ये प्यारा सा गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन बाद में कोई ना बोलने की नौबत ना आए इसलिए पहले ही ये बात जो है ना आपको आज के आज में बता दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: देखो यार, ह्यूमन माइंड जो है ना ये बड़ा ही कमाल है। मतलब हमारे अंदर कुछ जाए या ना जाए लेकिन वो जो लालच वाला कीड़ा जो है ना ये हमेशा ही रह जाता है। एंड खासकर जब भी किसी अच्छे इवेंट की बात होती है, किसी प्रमोशन की बात होती है, तो लगता है भाई क्यों ना आखिरी पल तक रुके, सारी चीज़ें जो हैं और भी ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगी, क्या पता फ्री में भी मिल जाए। मतलब ऐसे हम कितने भी पैसे कहीं खर्च क्यों ना कर दें लेकिन जब भी कोई अच्छा इवेंट हो तो दिमाग में आता है कि वो फ्री वाला कीड़ा ज़रूर मिल जाए। वाला जी अंशु है इस वक्त आपके साथ, लेकिन इतना बता दूँ हर एक अच्छी चीज़ मुफ्त में मिलने लगे तो फिर बात ही क्या। चलिए एक गजब के एक्सपीरियंस की बात करते हैं। हम ना अक्सर ये बात सोचा करते हैं कि क्यों ना हमारे अंदर ऐसे कोई पावर आए, ऐसी कोई शक्ति आए कि हम लोगों का दिमाग जो है वो पढ़ पाए। हाय जिस दिन ये हुनर आ गया ना, सच कह रही हूँ, जिंदगी जो है कितनी मुकम्मल है जरा सोचो। लेकिन जिसके पास ये हुनर है उसके साथ जिंदगी बिताना किस तरह का होगा जरा ये भी सोचो। तो चलिए ये काम जो हम उन्हीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी शख्स जो आएगी आपके चारों खाने 101% चित्त कर जाएगी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त यह आपको बताएगी, साथ ही अपने दिमाग को किस तरह काबू में करे इसका बहुत प्यारा सा पार्ट यानी कि लेसन आपको सिखा जाएगी। कदर की हिस्ट्री में पहली बार वो आने जा रही है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह। वेल इंडिया की नंबर वन मेंटलिस्ट एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। 25 सितंबर 25th ऑफ सितंबर इज द डेट एंड इसके अलावा कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में आप ये इवेंट एंजॉय कर पाएंगे। मिर्ची वन की आप सभी के लिए पेशकश। इतना बता दूं 20th ऑफ अगस्त तक ही अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, इसके बाद आपको कोई एडिशनल डिस्काउंट ऑफर या फ्री टिकट्स नहीं मिलेंगी। दिस इज द फर्स्ट एंड द फाइनल डील। अभी अगर आप जाएंगे तो फटाफट से आप 20% अवेल कर पाएंगे एंटिल 20th ऑफ अगस्त। scity.com पर जाइए, सोनू सिटी पर जाकर अपनी टिकट्स बुक करिए। एंड और भी अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि दो टिकट एक साथ खरीदनी है, भाई ₹150 में दो टिकट मिल रही है, ये एक स्पेशल डील एंड ऑफर आपको सिर्फ और सिर्फ सोनू सिटी में इस वक्त मिल रहा है। जाइए फटाफट से टिकट्स अपनी सिक्योर करिए एंड आप और हम मिलकर उसके बाद सुहानी शाह का मैजिक लाइव विटनेस करेंगे। क्या कहती पब्लिक, एंजॉय। बद्दी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Amit Trivedi, studio hai, guitar hai, mahol hai. Ruke kis liye aap?
3: होने दो बत्तियां, होने दो बत्तियां, सीने में दिल, सॉरी वन मोर टेक प्लीज.
2: टेक एज मेनी टेक्स एज यू वांट अमित त्रिवेदी, हम तो सुनते रहेंगे. मिर्ची इट्स हॉट,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: अमित त्रिवेदी, स्टूडियो है, गिटार है, माहौल है, रुके किस लिए आप?
3: होने दो बत्तियां, सीने में दिल, सॉरी वन मोर टेक प्लीज.
2: टेक एज मेनी टेक्स

0: लेकिन उसे पता है सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट
2: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
0: उसे सब पता है लेडीज एंड जेंटलमैन योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC
3: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: The mentalist Suhani Shah.

क्या गजब की आग लगाई थी। एंड उसके बाद अभी अभी जब ये गाना फिर से आया सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में, एंड भाई ये गाना देख कर एक बार फिर से ना दिल में कुछ हो या ना हो लेकिन बिजुरिया वाली फीलिंग जो है वो जरूर आई है। मिर्ची अंशु हाँ जी, बजुरिया जो है एक बार फिर से आपकी जिंदगी में कड़ाके की कड़कने वाली है, ऐसी अच्छी वाली खबर मैं आपकी जिंदगी में पहुंचाने जो वाली हूँ। वेल आज अंशु एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुकी है। एंड सच कह रही हूँ यार, जब जब मैं यहाँ पर होती हूँ और मेरे अकाउंट में पैसे होते हैं, मुझे ये बात रियलाइज भी हो जाती है कि भैया अच्छा खासा एक्सचेंज का रेट है, तो उस वक्त दिल में खुशी हो तो भाई कैसे ना हो। मैं तो सच कह रही हूँ, ये ट्रेंड मैं इस वक्त कतर में इतना ज़्यादा मशहूर होते हुए देख रही हूँ ना, कि हर महीने लोग जो है पैसे लेते हैं लेकिन ईमानदारी से वापस भी देते हैं। एंड मैंने देखा है कि अगले महीने फिर वो आते हैं कोई ना कोई दरख्वास्त लेकर पैसे की, लेकिन ईमानदारी से वापस देते हैं क्योंकि पता होता है कि फिर से लेना है। जब एक्सचेंज का रेट अच्छा लगे तो उधार ले लो, जब थोड़ा कम लगे तो वापस दे दो। ये जो ट्रेंड है इस वक्त कतर में काफी चल रहा है, जरा बच के रहे। नहीं मैं ऐसा नहीं करती, मैं तो सब बता रही हूँ, देखिए आज का पैसा क्या बोलता है। वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.13, साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.30, नेपाली रुपीज 41.78, बांग्लादेशी टाका 33.97 एंड लंकन रुपीज मचाते हुए पूरा ही डंका 92.10। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, उधार में ना दियो। जस्ट सेइंग, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

Well, सुनने का मेरा सी स्कोर की खूबसूरत सी आवाज और व्हाट अ फैंटास्टिक पावर पैक ट्रैक इट इज. चाहे मैं इसके इनिशियल वर्जन की बात करूं जो कि रिलीज हुआ था साल 1999 में इन द फिल्म मौसम, नॉन फिल्म पॉप एल्बम आई वुड से इंस्टेड, जिसे कंपोज किया था रवि पवार ने. एंड भाई उस समय भी सोनू निगम और अजय झिंगन ने

0: only on 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: यार कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये एक हुनर अगर मेरे अंदर आ जाए ना, सच कह रही हूँ, लाइफ की ना जाने कितनी समस्या का समाधान मिल ही जाना है।
2: मिर्ची अंशु।
1: अरे तुमने भी न जाने कितनी दफा मेरी तरह बस यही सोचा होगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, बस ये पता चल जाए, खासकर अपने पार्टनर को लेकर या तो फिर अपने बॉस या अपने कोलीग्स को लेकर। लेकिन ये हुनर अगर इतनी आसानी से मिलने लगा तो बात ही क्या है। लेकिन इतना बता दूं, कोई है जो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ना ही सिर्फ ये पता किया जाए कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, बल्कि साथ ही तुम्हारे चारों खानों को चित्त करने का काम और तुम्हें तुम्हारे ही राज बताने का काम करने वाली है। कतर की हिस्ट्री में पहली बार अगर कोई शिरकत करने वाली है तो वो इंडिया की नंबर 1 एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह। तारीख जो है याद रखिए, इट इज गोइंग टू बी 25th of September, जब कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में सुहानी का मैजिक हम सबकी जिंदगी में सर चढ़कर बोलेगा। और एक बात यहाँ पर मैजिकल तौर पे और भी बता दूं, अगर लगता है कि फटाफट से इस इवेंट में आने की तैयारी करना है तो इस वक्त चल रहा है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जहां पर 20% तक का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं स्नूनो सिटी यानी कि एस सिटी पर जाकर। एंड अगर लगता है दो लोगों को साथ में आना है तो 150 रियाल्स में 2 टिकट्स मिल रही है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से टिकट्स बुकिंग करिए, बाकी आप और हम मिलकर सुहानी का मैजिक मिलकर जिएंगे। क्या कहती पब्लिक, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virba, la burga. Milchi, burga.
2: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकंड। मिस्टर मनोज
3: जी बोल रहा हूँ।
2: मिस्टर मनोज मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
3: कहाँ ना सर?
2: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
3: टाइम बताएंगे कितना आना है मुझे?
2: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
3: मैं दे दूंगा।
2: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
3: 4 यूनिट?
2: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं चाहिए इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
3: क्या चढ़ाना है?
2: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
3: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है।
2: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
3: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब चढ़ाऊं?
2: आपका ग्रुप मिल गया
3: सर? इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: यूरिन का भी कुछ होता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
3: जी जी,
2: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
3: अच्छा,
2: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
3: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
2: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
3: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
2: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
3: जी
2: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
3: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

0: मैंने पानी बचाओ अभियान ऐसा तो कुछ अपनी जिंदगी में शुरू नहीं किया, तो भाई ये मेरे पीछे क्यों ही पड़े हुए?
1: मिर्ची अंशु।
0: सुबह के ठीक 6:30 बजे मैं घर से बाहर निकली एंड रियलाइज हुआ कि ना बारिश हुई ना मैंने पानी बचाओ अभियान शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद मैं जो है अपने आप भीग गई। यानी ये असर यानी ये कसर मेरी जिंदगी में अगर किसी ने किया तो वो है इस मौसम ने। वेल आर्जे अंशु एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुकी है। सच कह रही हूँ, जिस तरह की गर्मी का आलम इस वक्त आप और हम महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पता है कि घर पे भुर्जी बने ना बने, लेकिन इंसान की भुर्जी कैसे बनती है ये बात हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इतना कहना चाहूंगी, जहां पे एक तरफ गर्मी है वहीं दूसरी तरफ ह्यूमिडिटी और भी ज्यादा है। नाउ ऐसे स्टेट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है खुद को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखें, पानी जो है ज्यादा से ज्यादा पिएं, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ड्रिंक होते हैं, मैं तो कहती हूँ ओकेजनली अगर आपको लगे आपको नींबू पानी नमक भी पीना है भैया जरूर पिए, क्योंकि हाइड्रेशन इज द की एट द मोमेंट। ना ही सिर्फ खुद को गर्मी से बचाने के लिए लेकिन बॉडी के टेम्परेचर को पूरी तरह से मेंटेन करने के लिए। और हम जो है बड़े ये बात समझते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे जो है ना खेल कूद में ये बात भूल जाते हैं कि ओकेजनली लगातार पानी भी पीते रहना है। तो बच्चों का खासकर बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बाकी घर पे कोई अच्छी शिकंजी बन रही तो हमें जरूर बुलाएं। 5000 1896 वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टेडियम टू मिर्ची बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
3: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
4: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

यार मैंने तो कैलेंडर में डेट ब्लॉक कर ही लिया है कि यहाँ मुझे जल्द पहुँचना है। आपका क्या हाल है? मिर्ची अंशु मतलब ऐसी चिलचिलाती गर्मी में कोई सामने से आकर कहे कि इंडोर इवेंट अटेंड करने का अच्छा खासा मौका है तो पीछे हटोगे क्या? भाई एसी वाला टेंट है, खाने पीने का ढेर सारा ऑप्शन है, खरीदी करने के लिए भी बहुत कुछ है। अरे लोकल डेट्स एग्जीबिशन की बात कर रही हूँ, अब तक के सबसे बड़े एडिशन के साथ सुख वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में एक बार फिर से आ चुका है। कम्प्लीट एसी वाला माहौल है, जाओ यार जाके इंजॉय करके आओ। देखो मैंने तो सोचा है कि ना ही सिर्फ लोकल डेट्स एंजॉय करना है लेकिन वहां पे ढेर सारी डेट्स से बनी हुई जो डिशेस है ना मुझे वो भी लेकर आनी है। पता है क्या, प्रोसेस डेट्स तो अक्सर आए दिन हमें मिल ही जाते हैं लेकिन ये जो रॉ कच्चे वाले डेट्स हैं ना, जो ऑर्गेनिकली पकते हैं, भाई इन्हें खाने का मजा जो है ना काफी अलग है। एंड हर साल मैं वेट करती हूँ कि लोकल डेट्स एग्जीबिशन कब आने वाला है। एक बार फिर से इनकी बाहर आ चुकी है तो सूक वाकफ ईस्टर्न स्क्वायर अंटिल 10th ऑफ अगस्त जाना है, खूब सारा डेट्स खरीद के ले आना है एंड घर पे उसके बाद जो कुछ अच्छी डिशेस बने अंशु को जरूर बुलाना है। प्लान सेट है जी, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
3: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, यू नो, सब पागल अनहिंज्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स।
2: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: इट्स ऑल डाउन टू धोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

यार सच कहूं, जब मैं अभी अभी वेकेशन पे गई थी, इतने दिनों तक बाहर थी, बहुत कुछ बाहर खाना खाने का मौका मिला, नए नए डिशेस ट्राई करने का मौका मिला, लेकिन ना एक पॉइंट के बाद मैं इतनी त्रस्त हो गई थी, अगर मुझे जेन्युइनली किसी बात की क्रेविंग हो रही थी तो बस यही कि मुझे कहीं से दाल चावल मिल जाए। मतलब मेरा कम्फर्ट फूड अगर लाइफ में कुछ है ना तो बस यही, और वो है दाल चावल। आप मुझे कुछ भी खिला दो, मेरा पेट नहीं मलने वाला जब तक मुझे ये ना मिल जाए। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अक्सर आपके घर में रूटीन में क्या खाने में बनता है, और इसके अलावा आपका कंफर्ट फूड क्या है? क्योंकि खाने की बात हो रही है, एक बज गए, भूख लग रही है, इसलिए आपसे सोचा जरा सवाल पूछ लो। मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। बंदी का नाम अंशु। मा सलामा हबीबी।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल, मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है, मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू, सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है. ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया. मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के रहूंगी.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइन्स पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से. मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों के, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज. तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था. चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था. थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था. बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था. रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था. क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था. देखा, लगा ना, वाकई में लगा ना. मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं. अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था. तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virtua la burga. Milci, burga. हेलो,
2: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार?
1: Hello?
2: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने Hello? माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग जाए किसी का।
2: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
1: क्या आप पागल है क्या?
2: पागल आप है, पागल आप है
1: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे।
2: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भागी है?
1: हेलो,
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
2: आज के बाद घर से गए आ गई ना, तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah, live in

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी. तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड नहीं, मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखनी है. नहीं नहीं, इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी एज किड्स. ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया. एंड वेल, ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म. ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी ये सब थे. और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी. लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी. और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉल आउट हुआ था. हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई ना कि ममता कुलकर्णी की. हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा. लेकिन ऑनेस्टली पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था. लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था. बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया. बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और सही जवाब है चाइना गेट. मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है. एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं. अगला इंसान कहता है नौने पौ. I still use this dialogue in my life. अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती. लेकिन कमिंग बैक टू चाइना गेट, हाँ, ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल. हाँ, और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था. लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था. हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे. एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा. इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग. सर्दियों में हम भी यही करते हैं. हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर. एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का बता रहा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: यू नो आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं ऐसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं, यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
1: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
8: In association with Dairy Queen, beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen and Papa John's. Enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
9: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
10: Visual media partner, Rehab Media.
11: Production partner, Symphony.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गई यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छेड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज़ लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vie est pas la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया है, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: थोड़ी ना
2: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले पहले पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है, आप फालतू
3: हैं। सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू को।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: ये वो गाना है जो आपको ऑफिस में वायरल कर सकता है। मोहित चौहान ने गाया इतनी मस्ती में ना इस गाने को, आई स्वेयर। यू नो व्हाई आपको वायरल कर सकता है? क्योंकि अगर इस गाने को आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो ना, तो आप आसपास की दुनिया जो है ना उसको तो भूल ही जाओगे, और फिर आसपास की दुनिया को भूलने के बाद जो आप अपने आप में खो जाओगे और नाचते हुए नजर आओगे और अजीब अजीब सी आप क्रियाएं करते हुए नजर आओगे ना, तो ऑफकोर्स वायरल होना तो बनता है ना बॉस। ये गाना ही वही है जो आपको दुनिया भुला देता है, आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो है वो भुला देता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की ताल पर नहीं, इस गाने की ताल पर नचा देता है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम जो म्यूजिक के इतने दीवाने हैं मेरे यारा, वही तो आ जाते हैं रोज रोज ये कहने के लिए कि मान ना मान करो गानों की पहचान। अब सिंस मुझे पता ही है कि आप म्यूजिक के इतने फैन हो और म्यूजिक आपके लिए थेरेपी है, तो यहीं पर मैं एक दाव खेल जाती हूँ और रोज आपके लिए एक सवाल गाने की सूरत में चलाती हूँ और दो गानों की धुनों को मिक्स करके आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार ये दोनों गाने कौन से हैं। तो आज की जो दो धुनों का मिक्स है वो है कुछ यूं। गिव इट अ लिसन।

बस जी, अब आपको डीएम करना है ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दो कौन से गाने हैं जो अभी आपने सुने। मिर्ची सारा इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
2: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
3: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I'm not too sure आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन, जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: जो सनसनाए, क्यों जिस्म थर थर आए, कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था, शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए definitely not this track, लेकिन coming up another one आपके लिए, झूम जाओगे. Stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम है, आई डोंट रिमेम्बर माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते. तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की.
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते. हर दिन की नई शुरुआत. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं. या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है, सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है ऑपरेशन थिएटर उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए और धिकताना गाना वहीं से शुरू होता है राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती हैं कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बना दिया यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं
1: दीदी, मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर, आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear, आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज स्टेशनरी देखती हूँ ना तो चौंक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप्ड ही आते हैं मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले। और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे, तब लगता था कि कितना काम है यार। लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पढ़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में, तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
3: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
4: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं, और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STT Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Oof, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है. बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया. और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक, संदीप चौटा. और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ. अरे अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए, अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार, तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा. पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए. तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे, सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
2: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है. I think he is one of those people.
1: तृप्ति डिमरी spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
3: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
1: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: आज गर्मी के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ माशुका मेरे भाइयों मेरे दोस्त, नाम है मेरा और गर्मी के बारे में मैं एक जो फैक्ट बताने जा रहा हूँ, आप भी कहोगे एकदम सही कह रहे हो, गर्मी और बेइज्जती इनको जितना ज्यादा फील करोगे उतनी ज्यादा लगेगी। फिलहाल अगर आपको लग रही तो कुछ कर नहीं सकते, मौसम ही ऐसा है। 4:04
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: तो जैसे बेइज्जती को इग्नोर कर देते हैं, गर्मी को भी इग्नोर कर दीजिए। कई बार ऐसा होता होगा आप किसी के सामने से निकल रहे हैं, आपको लगा ये आपको पहचानने वाले, आपने ऐसे सर झुका के नमस्ते किया सलाम का और सामने से कोई जवाब ही नहीं आया, तो अपने आपको एकदम आप कैसे इग्नोर करके धीरे से आगे बढ़ जाते कि किसी और ने तो नहीं देखा। बस वैसे ही गर्मी को देखिए, कहीं हेडअप आयोगी तो फिर कल देखेंगे। वैसे कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं, ह्यूमिडिटी का पारा जैसे ही बढ़ा गर्मी का एकदम जबरदस्त माहौल बन गया, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि गर्मी इतनी डिग्री लेके करेगी क्या, इसको कौन सा कलेक्टर बनना है। इसी उम्मीद में कि ये गर्मी लग रही है एंड आपको भी फील हो रही है और मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया है, आपके साथ शुरुआत करते हैं शाम शानदार की, क्योंकि अब अगले कुछ घंटे कम से कम गानों की ठंडक हम आपके कानों को देते रहेंगे। मिर्ची पर आंखों से तूने, इसका ये 2.0 वर्जन आ गया मिर्ची पे, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
1: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकंड। मिस्टर मनोज
2: जी बोल रहा हूँ।
1: मिस्टर मनोज, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए आके, इसकी जान बच जाएगी।
2: कहाँ ना सर?
1: हॉस्पिटल, प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
2: टाइम बताएंगे कितना है मुझे?
1: हाँ, कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
2: मैं दे दूंगा।
1: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बचाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं।
2: 4 यूनिट?
1: नहीं सर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ, ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं चाहिए इसको, यूरिन की कमी हो गई है, आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
2: क्या चढ़ाना
1: है? यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
2: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना
1: है। मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
2: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब चढ़ाऊं?
1: आपका ग्रुप मिल गया
2: सर, इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
2: जी जी,
1: हाँ, यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
2: अच्छा,
1: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
2: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
1: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
2: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
1: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
2: जी
1: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
2: सर नंबर कहाँ मिला आपको ये?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on Mirchi. It's hot.
4: Yep, yeah.
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live.

0: कमरिया हिल रही है, ऐसे गाने ऐसे ही होते हैं आपको फेस्टिव फील दे जाते। मस्त मौला गौरव आपके साथ। देवी और सज्जन, इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ अभी कतर में आपको 250 रुपए और देने पड़ेंगे।
1: #974974
0: यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि 250 कतरी रियाल जो आपके लगने वाले हैं, वो लगने वाले हैं अब रेंटल एग्रीमेंट पर। यस, हम बता दें कतर में एक नया अपडेट आया है और ये अपडेट दोहा में रियल स्टेट लीजेस पर है और ये इसी साल आया है, आज ही आया है यूँ कह लें, इनफैक्ट कल देर शाम, जहाँ पर 2008 का जो रेंट लॉ है उसमें नए चेंजेस किए गए और नए रूल्स के मुताबिक अब किसी भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या दूसरी रेंट को जब लीज एग्रीमेंट पर दिया जाएगा ना, तो उस पर एक 250 कतरी रियाल की फीस लगेगी। इसके साथ ही स्टेट प्रॉपर्टी बेनिफिशरीज के लिए मैंडेटरी लीज रजिस्ट्रेशन रूल्स को भी एक्सपेंड किया गया है। रेंटल डिस्प्यूट्स, अपील्स और पेनल्टीज के जो प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए भी आपके लिए कुछ कानून को रिवाइज किया गया है। एंड अब आप कतर में अगर हैं और नया एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं या फिर से रिन्यू करने जा रहे हैं एग्रीमेंट, तो याद रखिए इस बार 250 रुपए जेब से थोड़ी ज्यादा ढीले होंगे, लेकिन हम लोग तो वही वाले हैं, आधा आधा बांट लो भैया आपस में है, 125 तुम 125 हम। 89.6 मिर्ची 1 पर याद रखिएगा, इस बार 250 की एक्स्ट्रा डिमांड अगर आए तो आप बिल्कुल लड़िएगा नहीं, ये वो फीस है जो जेन्युइनली अब आपको शामिल करी गई है। एंड आई एम श्योर इससे आने वाले टाइम में आपके कुछ फायदे भी होंगे रेंटल डिस्प्यूट के टाइम पर। मिर्ची इट्स हॉट।

हाय हाय, अब आप इस फिश को ना मार पाए। यस मस्त मौला गौरव, आपको बता दे कि हमारे कतर में हर चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है, और ऐसे ही एक ख्याल रखा है दोहा में। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने फिशरीज डिपार्टमेंट के एनुअल किंग फिश यानी कनाट फिशिंग के बैन के अनाउंसमेंट के साथ, यस हम बता दें, हर साल इस किंग फिश के हंटिंग पर बैन लगता है। 15 अगस्त से 31 अक्टूबर तक ये लागू हो जाएगा, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि किंग फिश का जो स्टॉक है उसको कंजर्व किया जाए, बचाया जाए और मरीन रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना। हाँ जी, यानी कि मरीन की जो हमारी इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनी हुई है उसको बराबर से बनाए रखना एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस दौरान इस तरह की किंगफिश पर, किसी भी तरह के हंटिंग पर बैन होता है। यानी कि आप किंगफिश को नहीं पकड़ पाएंगे, अगर आप कोशिश करते हैं तो आप पर फाइन लग सकता है, इस बात को याद रखिएगा। हालांकि ट्रेडिशनल हुक एंड लाइन से फिशिंग करने की इजाजत पूरे बैन पीरियड के दौरान रहेगी, लेकिन उसके लिए बाकायदा कुछ रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। एंड बोल सकता हूं मैं कि ये अपने आप में एक अनूठी चीज है कि हमारे उस पूरे सस्टेनेबल एनवायरमेंट को, मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए कंट्री के मरीन रिसोर्सेज को ये बकायदा हर साल लगाया जाता है। और जो लोग फिशिंग के शौकीन हैं उन्हें पता है कि उन्हें कब से कब तक ये बैन को फॉलो करना है और कब तक फिशिंग नहीं करनी है। इस उम्मीद में कि अगर आप भी फिश हंटर हैं और जाते हैं मछली मार के खाते हैं पका के, तो आपको इस वाली कैटेगरी पर थोड़ा ध्यान देना है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
3: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
4: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे।
7: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
8: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।
7: The Mentalist Suhani Shah।

0: चाय चकाचक तो नहीं है भैया, गर्मा गर्म जरूर है। अब गर्मी का आलम तो कुछ यूं है कि अब मच्छर भी कान में आके पूछ रहे, भैया खून थोड़ा ठंडा तो है, पी लूं अगर परमिशन है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल, बात करें दिन का मैक्सिमम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और दिन का मिनिमम अराउंड 33 आएगा। बड़ी बात यह है कि ह्यूमिडिटी का पारा 46% पे ही हमारे छक्के छुड़ा रहा है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यही सोच रहा हूं मैं। फिलहाल दिन भर पानी पीते रहिए, एंड सूरज चाचू को बस इतना ही कहिए कि थोड़ा तो रहम करो। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं भी इस ह्यूमिडिटी का बिल्कुल बाल भी बाका नहीं कर पा रही है। कोई बात नहीं, आप पानी पी पी के कोसते रहिए, एक दिन तो गर्मी जाएगी और फिर अच्छे मौसम आएंगे, और हम एंटरटेनमेंट मिर्ची के साथ सुनते जाएंगे मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: Amit Trivedi, studio है, guitar है, माहौल है. रुके किस लिए हैं आप?

0: Sorry, one more take, please.
1: Take as many takes as you want, Amit Trivedi. हम तो सुनते रहेंगे. Mirchi, it's hot.
2: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
3: Only on Mirchi, it's hot.
4: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
5: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से.
4: योर स्पेशल ऑफर?
5: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है. ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए.
4: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
5: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है.
4: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
8: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कारपेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: अरे सर, जुखाम हो गया था तो मैं एक कफ सिरप की बोतल लाया था, अब ये बोतल ही नहीं खुल रही है, क्या करूं?
1: तू बेटा मार्केट जाओ और पहले कमजोरी ठीक करने की दवाई ले, जुखाम बाद में ठीक कर लियो।
2: I'm joking, mamma mia.

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन. कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का. इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल.
1: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून.

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: सुबोध शर्मा के आवाज में वे जुनू गाना सुनाया किसने गुरु? फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम बता दें, 5:04 होने को आ गए।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: हाँ जी, आ गया मस्त मौला गौरव आपके साथ करने ढेर सारी बात। लेकिन जब मैं आ गया हूँ तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देवी और सजनों, बारी आ गई खेलने की। और पहचान कौन में सबसे पहले खास बात, ये आवाज आपने बहुत सुनी है।
3: वो मेरी रियल लाइफ का किरदार, ऑन स्क्रीन इतना नहीं लेकिन रियल लाइफ का किरदार, मतलब हाँ बहुत हंसाता है अपने बच्चों को, नॉर्मली देख के मेरे को हंसते हैं।
1: बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये वो आवाज है जिसको हमने फिल्मों में पसंद किया है, इनकी अदाकारी के सब दीवाने हैं। और एक बार फिर से सुनिए।
3: वो मेरी रियल लाइफ का किरदार, ऑन स्क्रीन इतना नहीं लेकिन रियल लाइफ का किरदार, मतलब हाँ बहुत हंसाता है अपने बच्चों को, नॉर्मली देख के मेरे को हंसते हैं।
1: 5000 1896 5000 1896 पर आपको बताना है कि ये आवाज जो मैं आपको इस वक्त सुना रहा हूँ ये किस स्टार की आवाज है।
3: वो मेरी रियल लाइफ का किरदार, ऑन स्क्रीन इतना नहीं लेकिन रियल लाइफ का किरदार, मतलब हाँ बहुत हंसाता है अपने बच्चों को, नॉर्मली देख के मेरे को हंसते हैं।
1: तो भाई इनका ऑन स्क्रीन किरदार के साथ साथ रियल लाइफ किरदार इनके बच्चों को बहुत हंसाता है। बताइए ये कौन से हीरोइन है जिनकी आवाज मैं आपको यहाँ प्ले कर सुना रहा हूँ। 5000 1896 पर वॉइस नोट में अपना जवाब भेजिए। एंड फिलहाल अगर कोई ऊंचा लंबा कद वाला दोस्त, यार, सहेली है तो उसके लिए अगला गाना हमारी तरफ से डेडिकेट कर दीजिए, मिर्ची इट्स ऑट।

0: Mirci.
1: Iskaba la puskaba la sakaba la. Burka burka. La vipa la burka. Mirci burka.
2: हेलो
3: कहाँ पे है यार। हेलो हेलो ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या। हेलो बोल रही है यार।
2: Hello?
3: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। गई कहाँ पे है आज... मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो मैंने Hello? माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत कम अरे? से कम बात अरे? मेरी सुन मेरी बात सुनो।
2: अरे आपको कोई गलत फहमी है। मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ। आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
3: ये एक सेकंड तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ।
2: क्या अब आप पागल हैं क्या।
3: पागल आप हैं कि पागल आप हैं। पागल आप हैं
2: थे क्या। पता नहीं क्या है अपनी बोले चले जा रहे थे।
3: बोले चले जा रहे बकवास कम करिए आप। हैं किधर भागी है।
2: हेलो
3: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया। मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना बड़ी मुश्किल से मिलता है।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या। आप बुरा ना माने मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दिए।
3: आज के बाद घर से आ गई ना तो मैं बता दूं तेरे को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट। आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट।
9: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah.

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: पानी पानी हो गई।
1: मस्त मौला गौरव आपके साथ। देवी और सज्जनों, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब देते हैं। इस घंटे आवाज सुनाई आवाज बड़ी ही सिंपल सी थी, आपको पता करना है किसकी है।
2: वो मेरी रियल लाइफ का किरदार, ऑन स्क्रीन इतना नहीं लेकिन रियल लाइफ का किरदार, मतलब हाँ बहुत हंसाता है अपने बच्चों पर, नॉर्मली देख के मेरे को हंसते हैं,
1: नॉर्मली देख के हंसते हैं। आइए जवाब सुनते हैं।
3: हाँ जी सर, मुर्मू सर, मैं राम दिनेश यादव बोल रहा हूँ। करीना कपूर के, करीना कपूर,
1: करीना कपूर,
3: मैं राम दिनेश यादव बोल रहा
1: हूँ। ओके यादव जी,
4: एंड द एक्ट्रेस नेम इज काजोल, एंड काजोल इट्स हॉट।
5: हेलो गौरव भाई
1: जी, जी
5: गुड आफ्टरनून। ये आवाज है तमन्ना भाटिया की,
1: तमन्ना
5: नाम है रोशन।
1: अरे शादी नहीं हुआ तमन्ना।
6: हाय हेलो,
1: हेलो,
6: वेरी गुड इवनिंग गौरव भाई। ये आवाज है काजल जी का,
1: काजल जी का।
7: हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नासिर बात कर रहा हूँ। जो आपने आवाज सुनाई वो करीना कपूर की आवाज है।
1: करीना कपूर,
8: गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक है,
1: बिल्कुल बिल्कुल यूसुफ भाई।
8: ये आवाज है काजोल की। ओके थैंक यू, बाय बाय।
1: कोई काजोल कह रहा है, कोई कह रहा है करीना कपूर, कोई कह रहा है तमन्ना भाटिया, मतलब कंफ्यूजन का दौर बना हुआ है। लेकिन आपको क्या लग रहा है किसकी आवाज है ये जो मैंने यहाँ रेडियो पर आप तक पहुँचाई है?
2: वो मेरी रियल लाइफ का किरदार, ऑन स्क्रीन इतना नहीं लेकिन रियल लाइफ का किरदार, मतलब हाँ बहुत हंसाता है अपने बच्चों पर, नॉर्मली देख के मेरे को हंसते हैं,
1: नॉर्मली देख के हंसते हैं। ये किसकी आवाज है जो मैं यहाँ सुनाया हूँ और लोग उस पर अपना अलग अलग जवाब दे रहे हैं? कोई तमन्ना भाटिया, कोई कह रहा है शिल्पा शेट्टी। हाँ जी, दो चार लोग हैं जिन्होंने शिल्पा शेट्टी का भी नाम लिख कर भेजा है। हालांकि मैंने कहा है वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। ओके ब्रो, आई कैन वॉइस, आई एंजॉय। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आ गया इनका वॉइस नोट भी जिसमें ये कह रहे हैं शिल्पा शेट्टी है। अब क्या लग रहा है आपको? 5000196 एक नंबर है। एक आखिरी बार मौका दे रहे हैं आपको, जल्दी जल्दी बताइए किसकी आवाज है ये। मिर्ची इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
3: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
4: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
6: द मेंटलिस्ट सुहानीशा।

0: 89.6 मिर्ची वन पर कोयला का ये गाना यहाँ पर सुनकर कान एकदम हरा भरा हो गया।
1: मस्त मौला गौरव।
0: इस पिक्चर की जब भी बात आती मुझे पता नहीं क्यों अमरीश पुरी साहब का वो मेकअप याद आ रहा है, गजब है फिल्म में बने हुए थे। वैसे फिलहाल के लिए इस घंटे हम और आप खेलते हैं पहचान कौन में। एक आवाज जो आपके कानों में जाती है आपको बताना होता है कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस की आवाज है।
2: वो मेरी रियल लाइफ का किरदार, ऑन स्क्रीन इतना नहीं लेकिन रियल लाइफ का किरदार, मतलब हाँ बहुत हंसाता है अपने बच्चों को, वे नॉर्मली देख के मेरे को हंसते हैं।
0: हाँ तो मैंने यही पूछा था कि बताइए ये कौन सी एक्ट्रेस की आवाज है।
3: हेलो गुड इवनिंग।
0: इवनिंग
3: आवाज आप सुनाया वो काजल का आवाज है।
0: काजल
4: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
4: काजल का आवाज है।
3: ये आवाज है करीना कपूर की।
0: करीना
4: सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह
0: व बरकातहू।
4: कैसे बताए, भाई गौरव भाई
0: ठीक है
4: ठीक ठाक है।
0: हाँ जी हाँ जी।
4: ये आवाज शायद शिल्पा शेट्टी का है।
0: चलिए जी, इतने सारे कंफ्यूजन के बीच कोई शिल्पा शेट्टी कोई करीना कपूर, लेकिन हम अब सच्चाई बता ही देते हैं। दिस इज काजोल। यस काजोल सही जवाब। ये काजोल की आवाज है जिसमें वो एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कह रही है कि वो अपने बच्चों के साथ जब रहती है तो उनके बच्चे उनको डायरेक्ट सामने रियल मम्मी के रूप में देख के ज्यादा हंसते हैं, पिक्चर देख के उतना नहीं हंसते। चलिए जी, इनके घर में ऐसा है, लेकिन हम तो पैसा देते थे इसलिए कभी कभी ना भी हंसी आए तो भी हंसते थे क्योंकि लगता था पैसे बर्बाद हो इसलिए हंस दो। 89.6 मिर्ची वाली थॉट, बट माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस है आप यार।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
2: एलिगेंस एंड दिस एंड दैट, एवरीथिंग इनसाइड इज मी इज लाइक अ मैड पर्सन एंड आई लव मैड कॉमेडीज एंड आई लव दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस व्हिच आर लाइक लार्जर देन लाइफ। वो कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, यू नो, सब पागल अनहिंज्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स।
1: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah live.

जारा खान जस मानक की आवाज में भाई लहंगा दिलाने की बात करी लड़की, लेकिन लड़का बहाना बना रहा, मतलब लड़की मांग रही है लहंगा, लड़का बना रहा है कड़की का बहाना। इन सब के बीच पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसलिए सही रेट जरूरी है जानना। राइट नाउ अगर बात करें तो एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस 26.15 INR 26.15 भारतीय मुद्रा में, वन कतरी रियाल के बदले लंकन रुपीस 92.10 पाकिस्तान रुपीस की बात करूं जनाब, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.30 76.30 पाकिस्तान रुपीस, नेपाल रुपीस का रेट छोड़ दाजो, एक कतरी रियाल के बदले 41.77 का बल्चर रेट है। हाँ जी मोहिनी घर भेजने लाई पैसे ले, ठीक रेट छो 41.77 को रेट छो। अगर इसके बाद बांधू बांग्लादेश बात करके दादा, एक्टा कतरे रियाल के बदले 33.96 तो 33.96 बाड़ी देके पैसा भेज दियो। मस्त मोलो गौरफ के साथ मिर्ची सुनते रहो, अगला गाना राघव टशर मिलके डेस्पेराडो डेस्पेराडो मिर्ची पे सुना रहे, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए, सवाल क्या है?
0: यार अप्रेजल में बॉस को इतने सारे काम दिखाए फिर भी वो अप्रेजल नहीं दे रहा, क्या करूं?
1: उसको शायद गिनना ही नहीं आता होगा। उसको गिनती सीखने के लिए किंडरगार्टन भेजो।

0: लाल लाल कलर ची बांगड़ी संजू राठौर की आवाज है। गाना है इसका मजेदार। फिलहाल संजू राठौर मराठी आवाज अब पूरे भारत पर राज करी, यूं कह लें म्यूजिक वर्ल्ड पर एक अलग सी छाप छोड़ रहे हैं। 6:03 घड़ी का टाइम।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: एंड कभी कभी हम सोचते हैं लाइफ में यार कि क्या ही हो जाएगा अगर एक प्रिंटिंग कार्ड बन जाता तो क्या ही हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चा था, वो जब बड़ा हुआ तो उसके सपने थे कि यार मैं ना अपना एक बिजनेस खोलूं, और उसने मोमोज का बिजनेस खोल दिया और उसके साथ उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप चलाना शुरू किया। लेकिन लोग आते थे चले जाते थे पर कोई बता नहीं पाता था कि उसका एड्रेस सटीक जगह कहाँ पर है। फिर क्या है, इस बच्चे को किसी ने कहा कि यार तू अपना एक विजिटिंग कार्ड छपा ले। बस बंदे ने विजिटिंग कार्ड छपाया और जो आता उसको देता और कहता ये लोकेशन है, ये मेरा नक्शा, आपको इस कार्ड के पीछे दिख जाएगा। बस भीड़ आने लगी। तो कभी कभी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जाने और आने वाले को अपनी दुकान से या अपने बिजनेस से एक ऐसा कार्ड दें जिससे वो हर वक्त आपको अपने ध्यान में रखे, जब भी उसके टेबल पर वो कार्ड उसे दिखाई दे। और ये आप कार्ड कहां बनवा सकते हैं, हमारे कतर में है ना एक ब्रांड आर्ट्स। यस, ये आपके बिजनेस को बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ बेहतरीन ब्रांडिंग देते हैं। एंड ब्रांड आर्ट्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए यू कैन डायल ऑन द नंबर 7188231617182316। वैरायटी ऑफ कार्ड्स बनते हैं। एंड द डे आई वाज देयर, मैं गया था जब हम सुहानी के लिए पूरी चीजें कर रहे थे, तो मैंने इनके आइडिएशन को देखा और कहा यार आज के युग में ना आप वो पुरानी चीजें जो चली आ रही उसको नहीं, कुछ नया इनोवेटिव करके ही करेंगे। और भाई ने एकदम इनोवेशन मुझे जो दिखाया, आई वॉज इम्प्रेस। और मैं ये कहूंगा यू कैन ट्राई इट वंस इफ यू वांट, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा आपके ब्रांडिंग का साला सॉल्यूशन। एंड मस्त मौला गौरव के साथ एंटरटेनमेंट का सॉल्यूशन। अगला गाना सिद्धार्थ मसरूर की आवाज में मिर्ची भरी।

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, ई रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. टीएनसी सप्लाई.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah. Live

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ, क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
2: चंद्रो फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख। ये क्या है यार ये?
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराई,
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है, आप फालतू हैं।
3: नहीं सर, आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे

कैसे हुआ ये, कैसे किया, सब यही पूछते हैं जब ये लड़की कुछ करके दिखाती है। मस्त मौला गौरव आपके साथ है, और मिर्ची जिसे लेकर आ रहा है आपके कतार में, उसका नाम है सुहानी शाह। एंड 7 साल की छोटी उम्र, यानी कि इमेजिन कीजिए 7 साल में इंसान छोटा सा बच्चा होता है, उसमें कोई स्टेज शो कर अपना ये पावर दिखा रहा था। चाहे आप उसे मेंटलिस्ट कह लीजिए, माइंड रीडर कह लीजिए, मैजिशियन कह लीजिए, एंड भाई ये सारी चीजें कर उदयपुर राजस्थान में 29 जनवरी 1990 को पैदा हुई, लेकिन आज पूरी दुनिया में अपने जैसे हजारों को बनाने की कोशिश कर रही है। यस, लोग इनको देखकर पागल हो जाते हैं, लोग कहते हैं कैसे कर सकती है, और मैं नहीं, सलमान खान, आमिर खान, MS धोनी, गौतम गंभीर, और नाम लेते जाइए आपको मिल जाएगा। मैंने इरफान पठान के साथ में इनका एक कॉन्वर्सेशन देखा, जहां ये इरफान को बता रही थी कि आपका एक रिचुअल है जो लोगों को नहीं पता है, बहुत कड़ा क्रिकेट फैन ही देख के समझ पाएगा, पर आप इतनी बार लेफ्ट पैर पे टिप मारते हैं अपने बैट से, फिर राइट में, फिर आप बैटिंग करते हैं। एंड इरफान पठान वाज शॉक्ड। बिल्कुल मिलाकर दिमाग को पढ़ना या आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये सोचकर बता पाना, ये हर कोई नहीं कर सकता। एंड क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपको कहूं कि इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ये होम स्कूलिंग से पढ़ती थी, क्योंकि घर वालों को पता था इस लड़की का दिमाग अलग लेवल पर है, चाइल्ड प्रोडिजी जो आज जीनियस हो गई है और हमारे कतर में आ रही है। यस, सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, द मेंटलिस्ट शो हमारे कतर में होने जा रहा है, प्रेजेंटेड बाय आईपे। हमारे एसोसिएट पार्टनर है डेरी क्वीन, पापा जोन्स, हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, इसके अलावा हम सिंफनी को प्रोडक्शन पार्टनर बनाए हुए हैं, हमारे ब्रांडिंग पार्टनर है ब्रांड आर्ट्स, इसके अलावा बलदना एंड किम्स हेल्थ भी हमसे जुड़ चुके हैं, एंड बहुत सारे लोग एक साथ आए हैं ताकि वो महफिल जिसमें बहुत कुछ गजब होने वाला है, पहली बार होने वाला है, उसकी टिकट्स आप भी बुक कर पाओ। 25th of September QNCC में होने वाला है ये सुहानी शाह का मेंटलिस्ट शो लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। 25 September QNCC, टिकट्स बुक कर सकते हो आप SCT बोले तो स्नूनू पे, जहां पर इस वक्त जबरदस्त अली भट्ट ऑफर चल रहा है। थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने बुक करानी शुरू कर दिया भाई, बंडल बुकिंग पे भी जबरदस्त तरह की बचत हो रही, जल्दी करो, बाद में कहोगे टिकट महंगी हो गई, हम तो लुट गए, तो हम तो बता रहे हैं अभी से ही ले लो मिर्ची।

अरे गिनना तो पड़ता है ना कितनी बिक्री हुई, ये तो सबको पता लगना ही चाहिए। देवी और सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही भयंकर तरीके से 1,00,000 किलो से भी ज्यादा के खजूर बिक चुके हैं। यस, यहाँ आपको बताना चाहता हूँ 11th डेट फेस्टिवल में रिकॉर्ड तोड़ सेल जो है वो जारी आएगी। 1,08,000 किलोग्राम्स ऑफ फ्रेश डेट्स, रुताब जिसे कहते हैं, वो बिक चुका है और पहले 9 दिनों में ये कमाल हो गया, 1,08,000 किलो। ये बता रहा है दोस्तों कि 61,000 विजिटर्स जो आए हैं, लगभग ऑन एन एवरेज सबने 1 किलो से ज्यादा ही खरीदा है। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है, जिसमें अगर बात करें तो खलास, इसके अलावा आप शीशी की बात करें, कुनेसी की बात करें, बरही की बात करें, ये सारी जो है वो बिक रही है। एंड सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो खलास कल्टीवर की है। हाँ जी, कुल मिलाकर अलग अलग टाइप की जो खजूर है उनकी वैरायटी यहाँ आपको मिल जाएगी, फ्रेश फ्रूट भी मिल रहे हैं एंड बहुत सारी चीजों के साथ साथ आपको एक मौका मिल रहा है जहां एक छत के नीचे ये सारी फ्रेश डेट जो है वो आपको मिल रही है। बड़ी बात यह है कि फ्रेश डेट की जो सेल है वो दोहा फेस्टिवल सिटी में भी चल रही है, विलाजिया मॉल में भी, लैंडमार्क मॉल में भी, और 24 डोमेस्टिक फार्म्स इसमें लगे हुए हैं। यानी कि हम कह रहे हैं पूरी दुनिया में कतर खजूर के मामले में हजूर पूरी दुनिया पर एक छाप छोड़ रहा है, और ये 11th लोकल डेट फेस्टिवल की सेल बता रही है कि पूरी दुनिया अब हमारे वहां का खजूर खा रही है। आने वाले टाइम में हमको एक और बिजनेस आइडिया मिल गया ना, बताएंगे? नहीं, हम तो कर लेंगे तब बताएंगे, वरना नजर लग जाती है। नजरें मिली, दिल धड़का हो रहा है मिर्ची पे, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
3: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
4: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
6: द मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव।

0: कतर के समुंदर अब और सेफ हो गए हैं।
1: मस्त मौला गौरव
0: आपके साथ है और यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको ही पता होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। यस, अब आप सोचेंगे किस मिनिस्ट्री ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन के साथ लेकर आए हैं ये स्मार्ट ऑब्जर्वर प्रोजेक्ट। अब आप पूछेंगे ये क्या है, तो भैया ये दिखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बोट है, नॉर्मल सी बोट, लेकिन इस बोट के अंदर स्मार्ट ऑब्जर्वर लगे हुए और ये एकदम भले ही आपको लगेगा कि खिलौने जैसी लग रही है, इसमें तो कोई चला नहीं रहा है, ये असल में रिमोटली ऑपरेटेड बोट है, रिमोट से चलेगी और कतर के समुद्रों को मरीन एनवायरनमेंट पर इसकी असली नजर रहेगी। इसका काम है जैसे पानी के सैंपल्स कलेक्ट कर लेगा, एनवायरमेंटल सर्वेस कर लेगा और रियल टाइम डेटा रैपिडली एक्यूरेटली गैदर करके इसे कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा भी देगा। शॉर्ट में बोले तो भाई मैनुअल मेहनत खत्म और स्मार्ट टेक से, टेक्नोलॉजी के इस अपग्रेड से हमारे कतर के समुद्रों पर रखी जाएगी नजर, प्रोटेक्शन जो है उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा को ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल मिलाकर डेटा कलेक्शन से लेकर यह बोट बहुत सारी चीजों में काम आएगी जिसमें एनवायरमेंटल सर्वेज एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। ये जो बोट लगाया जा रहा है स्मार्ट ऑब्जर्वर, एंड ये आने वाले टाइम में कतर के समुद्रों को सेफ रखेगा, डेटा देगा एनवायरमेंट में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली अगर समुद्रों की बात की जाए तो उसमें ये सारी चीजें अब आसान हो जाएंगी। और मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी का दोनों होता है, एक सदुपयोग एक दुरुपयोग, यानी कि एक अच्छा एडवांटेज उठाकर यूज करना और एक मिसयूज करना। हमारा कदर पहली वाली चीज में बिलीव करता है, लगातार टेक्नोलॉजी के जरिए हर तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है और वो दिन दूर नहीं कि यहाँ हर चीज महफूज रहेगी, सुरक्षित रहेगी और उस पर साफ सुथरी नजर भी रखी जाएगी। 89.6 मिर्ची वन पर जब भी ये आता है तो मुझे वो क्लास टीचर की नजर याद आती है। हाँ जी, स्टैनली सर थे हमारे एक, मतलब उनके सामने ना हम कभी कभी चीटिंग नहीं कर पाया, वो सीसीटीवी कैमरा थे यार, आगे भी देखते तो लगता था पीछे देख रहे हैं। मिर्ची इट्स ऑट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हूँ. अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है. तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ. मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, बट तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी.
1: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: क्या बताओ सर, महंगाई 10% बढ़ी है और मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ 5%, क्या करूं?
1: महंगाई 10% इसलिए है कि वो तुमसे ज्यादा मेहनत करती है। तू भी महंगाई जितनी मेहनत कर, फिर तेरा भी 5 से 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा।
2: What?

0: शाम शानदार only on 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: चले जी, गाना का ये ट्रायल पैक आप ले सकते हो फिलहाल के लिए। आप जब मस्त मौला गौरव के साथ हो तो ऐसे गानों का ऐसे ही ले सकते हो। मिर्ची ट्यून करे रही है, एक से एक गाने हम सुनाते रहते हैं। फिलहाल टाइम बता दें 7:05।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: तो सबसे पहले बात करूंगा मैं फिलाडेल्फिया के लिए उस फ्लाइट की जो कतर एयरवेज ने रिज्यूम कर दिया है। यस, दोहा फिलाडेल्फिया रूट जो है उस पर अब डेली नॉन स्टॉप फ्लाइट जो है वो चलने लगी हैं, और ये अच्छे समय के आने के संकेत भी हैं, क्योंकि ये फ्लाइट रुक चुकी थी लेकिन अब August 1st से ये रिटर्न हो रही है। एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में अब और बड़े डेस्टिनेशंस खुलते जाएंगे। 160 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड हमारे कतर एयरवेज की कनेक्टिविटी ऐसे ही चल रही है और हर दिन के साथ ये बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच मैं आपको बता दूँ, मित्राश को सिंप्लीफाई कर स्पॉन्सर अप्रूवल हो, एग्जम्पशन रिक्वेस्ट हो, एक्सटेंडेड स्टेज जो आप आउटसाइड कतर रहते हैं उसमें भी अब आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर आराम से कर पाओगे। ये रेसिडेंसी सर्विसेज की सबसे मेन की चीज़ें हैं जो कि अब आपको मित्राश एप्लीकेशन के जरिए मिल रही है, जो हमारे लिए स्पॉन्सर का अप्रूवल लेकर आती है, चेंजिंग एम्प्लॉयर्स और रिक्वेस्ट एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम द लीगल पीरियड फॉर स्टेइंग आउटसाइड द कंट्री। यानी कि जो यू नो कानूनी सही तरीके से हम बाहर रहने का समय है अगर उससे हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारे पास मौका है कि हम उसके थ्रू भी अब रिक्वेस्ट कर पाएंगे मित्राश के थ्रू विदाउट विजिटिंग द जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट और यूनिफाइड सर्विस सेंटर्स। ये होता कि हम लोगों को जाना पड़ता था, सर ऐसा हो गया, वैसा गड़बड़ हो गया, अब ये जरूरत नहीं है, अब आपको ये आराम से ऑनलाइन मित्राश के थ्रू करने को मिल जाएगी। इन सब के बीच मित्राश के अलावा अगर हम बात करें कतर म्यूचुअलिटी डिपार्टमेंट की, उन्होंने कहा है कि वेंसडे बोले तो कल लोकल रेन और थंडर स्टॉर्म के चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है तो विश्वास कीजिए मेरी जो दुआएं हैं शायद रंग ला देंगी, क्योंकि यहां तो सिर्फ पसीनों की बारिश हो रही है, हल्की बारिश की बूंदे भी हमें थोड़ी राहत तो दे जाएंगी। 89.6 मिर्ची 1, बातों की शरारत कर लेता है मस्त मौला गौरव, यहां कोई और सिखा रहा है।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया है? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब? नहीं,
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स पटा।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live.

20 साल पहले ये किसी हॉरर शो का एक एपिसोड हो सकता था, लेकिन आज आज ये टेक्नोलॉजिया है। मस्त मौला गौरव आपके साथ है। देवी और सज्जनों, बताना चाहता हूँ कि कतर में अब इलेक्ट्रिक रोबो टैक्सीज का नेक्स्ट टेस्टिंग फेज शुरू हो गया है, जहां पर कार्स बिना किसी ड्राइवर के आराम से चल रही है। LIDAR और AI सेंसर्स के साथ ये गाड़ियां खुद ब खुद सड़कों पर चल रही है, सेफ तरीके से आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है, अपना सेफ ड्राइविंग का डिसीजन खुद ले रही है, जहां ट्रैफिक कंजेशन है वहां आराम से ड्राइव भी कर रही है। और अच्छी बात यह है कि पहला फेज कंप्लीट, अब दूसरे फेज की तरफ बढ़ गए। और ऑनेस्टली मेरा यह मानना है कि आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर से टूरिस्ट आएंगे हमारे कतर में, रोबोट टैक्सीज देख के कहेंगे भाई कतर अलग लेवल पे जा चुका है, ये तो फ्यूचरिस्टिक सिटी है। तो है, हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, हमने प्रयास किया है, पिछले 20 सालों में जमीन आसमान एक कर दिया है, तो अब रोबोट टैक्सीज का सपना भी पूरा हो जाएगा। विश्वास कीजिए, आज से 20 साल पहले फिल्मों विल्मों में किसी हॉरर शो में एक एपिसोड आता था जहां ड्राइवर लेस गाड़ी चल रही है और पीछे बैठे लोग डर रहे हैं, अरे बाप रे गाड़ी कौन चला रहा है। लेकिन आज आज ये टेक्नोलॉजिया बन गया है, और इसीलिए कहता हूं समय के साथ आपने जो भी सपने देखे हैं विश्वास कीजिए वो एक दिन पूरे होंगे, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सपना है वो तो सच में हकीकत बनने के लिए आपको आया है। तो आप अपने ऐसे किसी सपने पर काम कीजिए, आप भी कर लेंगे, हो जाएगा, करने से ही होता है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
3: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
4: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जुएं पड़ गई होंगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
7: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

घर का, शॉप का, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने जा रहे हो तो 250 कतरी रियाल एक्स्ट्रा लगेंगे। यस, लॉ नंबर 8 ऑफ 2026 जो कि 2008 के एक कानून को अमेंड करने के लिए आज बना है, उसमें इंट्रोड्यूस की गई है एक 250 कतरी रियाल की लीज रजिस्ट्रेशन फीस। यस, ये आपके लीज रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स में अब थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, और क्योंकि कुछ सर्टेन बेनिफिशियरीज जो स्टेट प्रॉपर्टी के हैं उनके लिए ये कानून में बदलाव लाए गए हैं, और रेंटल डिस्प्यूट को लेकर कुछ कानून बदले गए हैं, अपील्स को लेकर, पेनल्टीज को लेकर भी कुछ कानून में बदलाव हुए हैं, उसके बारे में आपको आने वाले टाइम में पता लगता रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए 250 कतरी रियाल की लीज रजिस्ट्रेशन फीस ये हर प्रॉपर्टी पे, हर तरह की प्रॉपर्टी पे लगेगी, इसलिए थोड़ा सा तैयार रहिए। एक्स्ट्रा खर्चा हल्का सा आएगा, लगभग 20 रियाल पर मंथ और लग जाए ऐसा लग रहा है, तो बहुत बड़ी चीज तो नहीं हो जाएगी। है जी, कितनी सारी चीजें सस्ती ले रहे हो, पूरी दुनिया में पेट्रोल के प्राइसेस देखिए। 89.6 मिर्ची वाली था।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

लटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमॉन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: वाला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: heartbeat

0: Bollywood, Bollywood, bold art.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू, एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम, आई डोंट रिमेंबर माय ड्रीम्स। मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते। तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की।
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते, हर दिन की नई शुरुआत। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold art.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah, live in

मलंग हो जाएंगे जब इसके जादू में आएंगे तो मलंगी हो जाएंगे। लेकिन सच में यार ये कैसे कर पाती है, 7 साल की छोटी उम्र से ये कर रही है। सुहानी शाह की बात कर रहा हूँ, दी मेंटली सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्रेजेंटेड बाय आईपे एसोसिएट पार्टनर डेरी क्वीन पापा जोन्स, रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, हमारे इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, हमारे मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, इसके अलावा सिम्फनी प्रोडक्शन पार्टनर एंड ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, ये सारे के सारे एक साथ आए हैं ताकि कमाल की वो शाम हम करा पाए जो कतर में पहली बार होने जा रही है। मेंटलिस्ट यानी कि वो जो आपके दिमाग को पढ़ सकती है, आपके दिमाग को समझ सकती है और हमें और आपको ये भी बता सकती है कि हम कैसे किसी और के दिमाग को पढ़ पाए। हाँ जी, कुछ तो सीखेंगे ही एंड हम भी पढ़ेंगे फिर आपके दिमाग को कि जब मैं आपसे उधार मांगने आता हूं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। इसी उम्मीद में कि आपने अपनी टिकट्स बुक करा ली है एस सिटी पर, क्योंकि यहां चल रहे इनॉग्रल ऑफर्स, उसका फायदा उठाइए। एस सिटी स्नूनू पर जल्दी जल्दी टिकट्स बुक कीजिए। इस उम्मीद में कि आप अपनी टिकट्स करा रहे हैं। मैं स्मॉल गौरव लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से यही शाम शानदार में। तब तक के लिए मिर्ची पर कान टिकाए रहो, वॉल्यूम बढ़ाए लो। अगला गाना हमारा बड़ा फेमस है, रोमांस को चरम पे पहुंचाता है, मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: अंकल, मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मम्मी पापा भी नहीं है। मुझे पता नहीं उनके लिए क्या लाऊं।
1: अरे मामू, सिंपल है ना, बाहर जा और उनके लिए फटाफट रिटर्न टैक्सी लेकर आ जा।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: इस्तकबाल ख्वातीनो हजरात, मिर्ची की इस महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और जिंदगी में याद रखना जितना जरूरी है दोस्त, मुझे ये पता चला कि उतना ही जरूरी होता है भूल जाना। अदीम हाशमी साहब का शेर है बड़ा खूबसूरत कि याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, भूल जाने के सिवा अब कोई भी चारा ना था। लेकिन मुझे मजेदार बात यह लगती है कि जिसे भुलाने की आप कोशिश करेंगे ना, उसे भूलना उतना ही कठिन होता जाएगा। फिराक गोरखपुरी साहब का शेर है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। तो दोस्त ये तो समझ आ गया है कि जवाब ढूंढने जाओ तो और सवाल ही मिलते हैं। बहरहाल मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Ritchie, it's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
0: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आप कताशी आपको रूबरू कराए आज एक ऐसे शायर से जो एक बहुत ही फेमस शायर के बड़े करीबी हैं लेकिन लाइमलाइट में नहीं है। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं सलमान अख्तर साहब की। अब आखिरी नाम से आप समझ गए होंगे अख्तर तो बिल्कुल जी जावेद अख्तर जी के भाई हैं और लखनऊ में इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1946 में और अभी ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं। और इनका एक बड़ा ही खूबसूरत शेर जो मेरे जहन को बड़ा प्यारा लगा मैंने पढ़ा हाल में और आपके नजर करूंगा। कहते हैं कि एक वही शख्स मुझको याद रहा, एक वही शख्स मुझको याद रहा जिसको समझा था भूल जाऊंगा। वाह जी वाह क्या बात है। और जिंदगी में कई बार ऐसी होता है कि आप किसी से अपना इमोशनल कनेक्ट एस्टैब्लिश कर लेते हैं और उसके बाद वो शख्स कभी आपके जहन से उतरता नहीं है। एक और शेर सुनाऊं आपको सलमान अख्तर साहब का जो मुझे बड़ा पसंद आया। लिखते हैं कि झूठी उम्मीद की उंगली को पकड़ना छोड़ो। वाह झूठी उम्मीद की उंगली को पकड़ना छोड़ो, दर्द से बात करो, दर्द से लड़ना छोड़ो। आय हाय हाय हाय हाय क्या मतलब एकदम साइकोलॉजिकली परफेक्ट बात कह दी है क्योंकि आपके थेरेपिस्ट भी आपसे यही कहते हैं कि रीअप्रेज करो अपने इमोशंस को, उन्हें रिप्रेस मत करो। झूठी उम्मीद की उंगली को पकड़ना छोड़ो, दर्द से बात करो, दर्द से लड़ना छोड़ो। बेहतरीन राइटर और खून में है यार इनके तो। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
0: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट SCD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपको आदाब अर्ज। और दोस्त जफर इकबाल साहब का एक शेर है जो मेरे जहन में घूम रहा है बड़े अरसे से। और शेर जब सच्चा होता है ना तो उसको याद करना नहीं पड़ता, वो याद हो जाता है। और ये शेर मेरी जिंदगी में कुछ उसी मकाम पे है। जफर इकबाल साहब लिखते हैं कि यहां किसी को भी कुछ हस्बे आरजू न मिला। हस्बे आरजू मतलब जैसा मांगा था, एग्जैक्ट सेम टू सेम। यहां किसी को भी कुछ हस्बे आरजू न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। कितनी सिंपल, कितनी सटीक बात है। और यही तो सिंपल सटीक बातें जो होती है ना, वो आपको याद नहीं करनी पड़ती हैं, वो आपका दिमाग खुद ग्रैस्प करके रख लेता है कहीं ना कहीं। और ये शेर मेरी जिंदगी में तो उसी मकाम पे है। बहरहाल अगर आपका भी ऐसा कोई पसंदीदा शेर हो तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। बातचीत करने भी आ सकते हो। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
0: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: It's always such a pleasure when we've got artists at our show. क्योंकि बड़ा ही दिल को सुकून मिलता है, बड़ा ही दिल को एक खुशी मिलती है जब कोई भी कलाकार जिसने कोई नगमा गाया हो, बनाया हो, उसका हाथ लगा हो, उसका गला लगा हो, उसका दिमाग लगा हो, वो शो पर आता है और उसके बारे में बात करता है। हमारे साथ आज विपिन अनेजा जी हैं और विपिन अनेजा जी ने अभी हाल में मूवी आई थी मैं वापस आऊंगा, उसमें गाना गाया तेरे पास में, और दैट सॉन्ग बिकेम वेरी वायरल, बहुत ज्यादा हिट हुआ वो गाना। उन्हीं से बातचीत चल रही है, देखिए।
3: हेलो, हाय विपिन, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप?
4: थैंक यू ताशी फॉर हैविंग मी, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं वापस आ गया हूँ।
3: अरे जिंदाबाद, द प्लेजर इज ऑल माइन बाई टू हैव यू ऑन द शो। रहमान साहब के साथ काम करके व्हाट वॉज द एक्सपीरियंस लाइक?
4: तो ताशी, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद रहमान साहब, आज 20 साल हो चुके हैं। हम सब एक मुख्तलिफ साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मुझे ऐसा लगता था कि काश रहमान भाई एक मेरी आवाज के लिए गाना बनाएं, और उसके बाद में तेरे पास में पे हम आ गए और उनकी कॉल आई, और उस एक्सपीरियंस को मैं शब्दों में कैसे ही बयां करूं कि जब मैंने वो कॉम्पोजिशन सुनी, उसकी दो वर्जन्स थी जो मैंने रिकॉर्ड करी चेन्नई में, जिसमें से ये वाली वर्जन अप्रूव हुई, और फिर उसके लगभग मैंने 3 से 4 डिफरेंट लिरिक्स भी मैंने मुंबई में गाए। तो एक पूरा एक्सपीरियंस ऐसे था जैसे कि एक आप तराशते हैं जब किसी मूर्ति को, और जब तक वो परफेक्शन उसका चेहरा एकदम शाइन करता है, तब जाकर के रहमान भाई उसे सिलेक्ट करते हैं। अब समझ में आता है कि व्हेन प्रिपरेशन मीट्स द अपॉर्चुनिटी एंड व्हेन योर राइट टाइम कम्स, और वो सही समय पर एक सही चीज आती है और उसको इस तरीके से तराशा जाता है, और वो भी द जीनियस रहमान साहब, इरशाद कामिल एंड इम्तियाज अली साथ के साथ में, तो इसका रिजल्ट ये होता है, तेरे पास में बन जाता है।
1: हाँ जी बिल्कुल, तेरे पास में बन जाता है। दैट वाज मिस्टर विपिन अनेजा, द सिंगर ऑफ तेरे पास में, एंड वी आर प्लेइंग हिज सॉन्ग ऑफ कोर्स। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ, एंड दिस इज तेरे पास में, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
1: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

कौन सा वाला डायलॉग मारूं आज, पुष्पा आई हेट टीयर्स पुष्पा, या फिर मोगैम्बो खुश हुआ, या फिर ये वाला बोलूं मेरे पास माँ है, या फिर आज खुश तो बहुत होगे तुम। तो आज ना उन मूवीज के आइकॉनिक डायलॉग जो जब बड़े पर्दे पे देखे गए तो पूरे इंडिया ने सदियों तक रिपीट किए। सो इन आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां मैं लेकर के आई हूँ। ये डायलॉग्स कैसे लिखे गए, कब लिखे गए, किसने लिखे एंड व्हाट वाज द सिचुएशन जिनमें इनको लिखा गया। अब जैसे कि पुष्पा आई हेट टीयर्स, इसके पीछे की कहानी क्या है बताऊंगी। गाने सुनकर के वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah.

1972 मूवी का नाम अमर प्रेम, मूवी के हीरो राजेश खन्ना, मूवी की हीरोइन शर्मिला टैगोर। और इस मूवी में राजेश खन्ना की जुबान से निकलता है, पुष्पा आई हेट टीयर्स पुष्पा, एक ऐसा डायलॉग जो आज भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मारते हो या फिर वाइफ को मारते हो या दोस्तों को एक ना एक बार तो बोल के जरूर दिखाते हो। तुम्हें पता है कहानी इस पूरे डायलॉग की? सो ये जो चार अल्फाज थे, पुष्पा आई हेट टीयर्स पुष्पा, ये एक्चुअली में कभी एक सेपरेट डायलॉग था ही नहीं। ये लाइन एक बहुत ही लंबे डायलॉग का पार्ट थी, लेकिन सिर्फ एक इंसान ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ इन चार अल्फाजों में पोटेंशियल देखा, और वो थे मूवी के डायरेक्टर शक्ति सामंत। उन्होंने इस डायलॉग को काटा और एक अलग से शॉट लिया राजेश खन्ना साहब का, एकदम उनके ट्रेडमार्क स्टाइल में। और फिर क्या था, ये चार शब्द पूरी इंडिया में क्रांति ले आए। रिलीज होने के जस्ट नेक्स्ट डे हर कोई ये डायलॉग मारते हुए सुनाई दे रहा था। पुरानी जीन्स पर दिस इज मी श्रेया। अगला कौन सा डायलॉग होगा बताऊंगी, वापस आऊंगी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक आदमी ने 10 साल तक अपने बाल नहीं काटे और उसके बाद सैलून चला गया।
4: कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
5: वैसे यार इसको सैलून जाने के लिए सालों लग गए हैं और मुझे लगता है कि अब इसको जू जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बालों में जूएं पड़ गई होंगी।
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये एक ऐसा डायलॉग है जो तब भी चलता था और आज भी चलता है, कितने आदमी थे। पुरानी जीन्स पर आज बात हो रही है आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियों की। सो शोले फिल्म का ये तीन वर्ड का डायलॉग कितने आदमी थे आज भी हमें जोक्स में मिल जाएगा। तुमने कभी ना कभी अपने कलीग्स पे मारा होगा, कभी फैमिली में मारा होगा। आपको पता है अमजद खान जी पे पिक्चराइज्ड इस एक डायलॉग के पीछे कितने रीटेक्स हुए थे? नहीं पता ना, इसके पीछे की कहानी बताऊंगी। लेकिन अभी नहीं, आपको मुझे ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि तब मुझे पता होता है आप इधर उधर कहीं नहीं हिलने वाले हो। तो वापस आओ, विल लेट यू नो द एंटायर स्टोरी। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पूरे 40 टेक्स लगे थे इस 3 वर्ड के डायलॉग को पिक्चराइज होने में। हाँ जी, तो आज बात हो रही है फिल्मों के आइकॉनिक डायलॉग्स की। कितने आदमी थे, डू आई नीड टू टेल यू कि ऑफकोर्स शोले फिल्म का डायलॉग था, अमजद खान पे पिक्चराइज था। फिल्म के डायलॉग्स लिखने वाले सलीम खान और जावेद अख्तर, फिल्म को बनाने वाले रमेश सिप्पी, ये पिक्चराइज होना था अमजद खान पे। अब इस एक डायलॉग में अमजद खान की आंखों में सांभा की इंसल्ट और डर दोनों को एक साथ आना था। अमजद खान ने 40 रीटेक्स दिए हैं और तब जाकर के सलीम जावेद को और रमेश सिप्पी साहब को उनके एक्सप्रेशंस पसंद आए थे। पुरानी जीन्स पर आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां विद मी श्रेया, तो बस कहीं भी मत जाना।

उस जमाने की फिल्मों के आइकॉनिक डायलॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो उस जमाने से लेकर के इस जमाने तक रिपीट किए जाते हैं। हम सब ने कभी ना कभी अपने बॉस को चढ़ाने के लिए, कभी अपने दोस्त को चढ़ाने के लिए, कभी अपने भाई बहनों को चढ़ाने के लिए ये जरूर बोला है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। सो दीवार फिल्म का ये जो डायलॉग था, ये अमिताभ बच्चन जी के लिए ही लिखा गया था। ये डायलॉग एक मंदिर में शूट होना था। जब अमित जी ने इस डायलॉग को पढ़ा, उन्होंने इसको शूट करने से पहले एक शर्त रखी। वो शर्त बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसको यश चोपड़ा साहब मानना नहीं चाहते थे, पर क्योंकि अमित जी जिद पे अड़ गए थे तो उनको माननी पड़ी। बताऊंगी इस एक्सक्लूसिव कंडीशन के बारे में, लेकिन तुम्हें तो पता ही है वो जो मैं करती हूँ, कुछ गानों के उस पार, सो दैट यू डोंट गो एनीवेयर एल्स। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
3: हाँ जी।
4: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
3: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
4: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
3: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
4: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
3: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
4: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
3: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
4: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
3: अरे शर्म की क्या बात है सर,
4: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
3: किसी का
4: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
3: लेंस कौन सा लगाया नहीं?
4: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
3: गायब नहीं
4: दी थी
3: मैं
4: कल
3: को फोटो खींचे।
4: अरे लेंस ऐसे
3: पूरे
4: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
3: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
4: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
3: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
4: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
3: हैं। सर क्या बात, सुन के बनाया है?
4: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
3: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
4: गड़बड़
3: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
4: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी
3: दिखाइए
4: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
3: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
4: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
3: कहाँ होता है बताइए।
5: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अमिताभ बच्चन जी ने जब ये डायलॉग पढ़ा, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे आइकॉनिक डायलॉग हो सकता है। उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये एक डायलॉग उनको ऑडियंस के दिल में जगह दिला सकता है। कैरेक्टर का नाम विजय, सीन शिव जी का मंदिर, डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब, एन एक्टर अमिताभ बच्चन, डायलॉग आज खुश तो बहुत होगे तुम। जब अमित जी ने इस डायलॉग को पढ़ा अपनी स्क्रिप्ट में, वो इस डायलॉग से बहुत इम्प्रेस हुए। इसको शूट करने के लिए उन्होंने यश चोपड़ा साहब के सामने एक कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि ये बीच रात में शूट होगा और क्रू का कोई भी मेंबर इस सीन को शूट करने के लिए वहां नहीं होगा, होंगे तो सिर्फ अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा साहब। 15 रीटेक्स लगे जब अमित जी ने खुद के इस डायलॉग की पिक्चराइजेशन को अप्रूव किया। उन्हें ये पता था कि आज तक किसी भी फिल्म में किसी भी एक्टर ने ऊपर वाले को चैलेंज करते हुए कोई डायलॉग नहीं बोला था। ही न्यू इट वॉज गोइंग टू बी ह्यूज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां चलती रहेंगी। तो बस गाने सुन करके फौरन वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
2: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। 1 2

अच्छा, जब आइकॉनिक डायलॉग्स की बात ही हो रही है फिल्मों के, तो रेट्रो फिल्मों की बातें तो हो ही रही हैं। क्यों ना एक ऐसे आइकॉनिक डायलॉग की बात करें जो कि एक 90s की फिल्म का था, 1994 में आई अंदाज अपना अपना। उसका एक डायलॉग इतना फेमस हुआ कि लोग आज भी उसे रिपीट करते हैं, तेजा मैं हूँ। ये डायलॉग निकला था परेश रावल जी के मुंह से। आपको पता है अंदाज अपना अपना की कोई भी बाउंड स्क्रिप्ट नहीं थी, एज इन एक एक डायलॉग एक एक लाइन नहीं लिखी गई थी। इनफैक्ट एक्टर्स जब एक्टिंग करते थे ना, तो कई बार उस सीन को, उस डायलॉग को इम्प्रोवाइज कर देते थे। और ये वाली जो लाइन थी, तेजा मैं हूँ, ये परेश रावल ने इस सीन को शूट करते करते ऐसे ही निकाल दिया था। फिर क्या, ये 90s की सबसे पॉपुलर फिल्म बनी, जो आज भी अगर किसी चैनल पे आती है तो हम लोग बिना देखे नहीं उठ पाते। पुरानी जीन्स पर आज ऐसे ही डायलॉग्स की बातें विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

उस जमाने की फिल्मों के ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स जो इस जमाने तक चलते हैं। तुमने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से तो ये जरूर कहा होगा, मोगैम्बो खुश हुआ। फिल्म का नाम मिस्टर इंडिया। ये डायलॉग लिखने वाले जावेद अख्तर साहब, फिल्म को डायरेक्ट करने वाले शेखर कपूर, और ये डायलॉग जिन पे पिक्चराइज था अमरीश पुरी यानी मोगैम्बो। अच्छा, शेखर कपूर इस फिल्म में हमेशा मोगैम्बो के कैरेक्टर को लेकर के ना काफी डाउटफुल रहते थे। जब जावेद अख्तर साहब ने डायलॉग लिखा मोगैम्बो खुश हुआ, तो वो शेखर कपूर के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हें ये डायलॉग कैसा लगा। शेखर कपूर को ये डायलॉग कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्होंने जावेद साहब से कहा कि मुझे इसमें कोई डेप्थ नहीं लग रही, बहुत ही सिंपल प्लेन है कि हाँ मोगैम्बो खुश हुआ। उसके बाद जावेद साहब ने शेखर कपूर से क्या कहा, विच मेड हिम कीप दिस डायलॉग इन द फिल्म, अभी बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जींस।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: रहता हूँ।
1: मूवी के हीरो अनिल कपूर, लेकिन ज्यादा पॉपुलर हो गए अमरीश पुरी साहब, क्योंकि डायलॉग जो उन्होंने बोला था वो बन गया था आइकॉनिक डायलॉग। इंडिया का हर बंदा आज भी ये डायलॉग बोलता है, मोगैम्बो खुश हुआ। मिस्टर इंडिया का ये डायलॉग लिखने वाले थे जावेद अख्तर साहब। मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर। शेखर कपूर इस डायलॉग से कुछ खास खुश नहीं थे, वो तो इसे रखना भी नहीं चाहते थे। जावेद अख्तर साहब गए और शेखर कपूर को ये डायलॉग बोल के दिखाया कि शेखर तुम्हें ये डायलॉग कैसा लगता है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इस डायलॉग में मजा ही नहीं आया, ये तो आप इमोशन बोल दे रहे हो, क्या मोगैम्बो खुश हुआ जैसे कि शेखर कपूर खुश हुआ। फिर पता है जावेद साहब ने क्या कहा कि जब भी कपिल देव ग्राउंड पे छक्का मारेगा तो पब्लिक चिल्लाएगी मोगैम्बो खुश हुआ। जब भी कोई तीन पत्ती खेलेगा और उसके तीन इक्के आएंगे तो वो इंसान खुश होके कहेगा मोगैम्बो खुश हुआ। शेखर कपूर को ये बात समझ में आई, फिर इस डायलॉग की डिलीवरी को अमरीश पुरी साहब तो कहां से कहां ले गए। एंड दैट्स हाउ दिस बिकेम एन आइकॉनिक डायलॉग। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की और भी बातें और भी गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर के सलीम साहब, जावेद साहब, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास गए और सबने मना कर दिया था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज आइकॉनिक डायलॉग्स की बात हो रही है। दीवार की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें था मेरे पास माँ है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट लेकर के ना वो लोग बहुत सारे डायरेक्टर्स के पास गए, प्रोड्यूसर्स के पास गए, लेकिन उस टाइम पे सलीम जावेद साहब एक ह्यूज अमाउंट कोट कर रहे थे, क्योंकि उनकी जंजीर ऑलरेडी हिट हो गई थी, शोले ऑलरेडी हिट हो गई थी फॉर द स्क्रिप्ट ऑफ दीवार। सो दीवार की स्क्रिप्ट के लिए वो 8 लाख रुपए मांग रहे थे। कहते हैं गुलशन राय, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट सुनी तो सबसे ज्यादा अगर उन्हें कुछ टच किया वो था मेरे पास माँ है। ये लाइन पढ़ते ही वो रोने लगे। अच्छा, जावेद साहब और सलीम साहब की ये जो जर्नी रही है ना, उसपे एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री आई है ऑन नेटफ्लिक्स, विच इज कॉल्ड एंग्री यंग मैन सीजन 1। उसपे जावेद साहब ने ना इस डायलॉग के पीछे की एक बहुत ही वैलिड, बहुत ही लॉजिकल कहानी बताई है। क्या है वो, अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

तो जावेद साहब का मानना था कि भाई अच्छाई तब तक नहीं पता चलती जब तक उसके सामने बुराई ना हो। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और बात कर रहे हैं आइकॉनिक डायलॉग्स की ऑफ हिंदी सिनेमा। उसमें एक इम्पोर्टेंट डायलॉग जो हमेशा के लिए दर्ज है, हम कभी ना कभी जरूर मारते हैं, और वो है मेरे पास माँ है। दीवार फिल्म के लिए जब जावेद साहब ने ये डायलॉग लिखा था ना, तो ही सेड कि ये स्टैंड अलोन डायलॉग नहीं हो सकता था। इस डायलॉग का जो शशि कपूर ने कहा निरूपा रॉय के लिए अमिताभ बच्चन से, ये तब तक वैल्यू नहीं करता जब तक अमिताभ बच्चन इससे पहले तक अपने मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं गिनवाते। तो इसीलिए जावेद साहब ने पहले अमिताभ बच्चन को डायलॉग दिए, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। और तब जब ये डायलॉग आता है कि मेरे पास माँ है, दैट वॉज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज ऐसे ही आइकॉनिक डायलॉग्स के पीछे की कहानियां चलती रहेंगी। तो बस गाने सुनकर के फौरन वापस आओ।

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: एक पके माटी के पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित उष्ण पर प्रधान हो तो काकशेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।

जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उमर की उठा।